0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, तो ये जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। इस सम्मेलन में लोग इंटरनेट के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति मुसुनुरु में भारत के पहले गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज का विमोचन करेंगे। वे किसानों को सम्मानित भी करेंगे और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों तथा अन्य प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक 4 दिवसीय जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे तथा जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में गडेरी नदी की तेज धारा में 9 लोग फंस गए, जिन्हें पुलिस, एसडीआरएफ और होमगार्ड की संयुक्त टीम ने सुरक्षित बचा लिया। एसडीआरएफ के जवान तेज धारा के बावजूद नदी में उतरे और सभी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाव के बाद सभी की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें सुरक्षित पाए जाने पर उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरू में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन जनजातीय भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। इससे देश भर में जनजातीय संग्रहालयों और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मजबूती मिलेगी। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाजों को अब तेहरान को सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस शुल्क में समुद्री, पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India.
1: हमें ऐसा एक aura खड़ा कर देना चाहिए कि इस field में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है हिंदुस्तान जाओ भारत की कोई startup से जुड़ जाओ भारत की कोई space agency से जुड़ जाओ मैं पक्का मानता हूँ जी पूरा talent pool जो है एक magnet की तरह हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है
2: Mr. Modi stated this during an interaction with the CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on National Space Day yesterday, Prime Minister Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures. During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. Union Home Minister Amit Shah will attend the 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. The two-day conference will be held in hybrid format, combining physical and virtual modes. Over 850 officers from various security forces and police forces from across the country will deliberate on various contemporary matters and challenges to national security during the conference. The Ministry of Tribal Affairs will organize a three-day national conclave on tribal languages and museums from today till Wednesday in Mysuru, Karnataka. The conclave will bring together a national dialogue on documentation, preservation

7:06 है, स्टूडियो की घड़ी का समय 100.1 FM गोल पर आपकी रेडियो दोस्त शर्मिशा करती हैं। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत, सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है सुहानी सुबह, जिसे आप सुनते हैं हर सुबह इसी जगह से इसी चैनल से। और चैनल आपने ट्यून किया 100.1 FM गोल्ड के अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारे ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपकी रेडियो दोस्त आप सभी श्रोताओं का करती है बहुत बहुत स्वागत। और हफ्ते का पहला दिन फिर एक बार बात हो रही है आप सभी श्रोताओं से, और म्यूजिकल जर्नी की जो शुरुआत है आज के दिन की उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। और इस जर्नी का जो साथ है वो और ज़्यादा खूबसूरत कब बनेगा पता है, जब आप सभी श्रोताओं का साथ जुड़ेगा इन अलग अलग कार्यक्रमों के साथ और जुड़े रहेगा इन सारे कार्यक्रमों के साथ, क्योंकि बात होगी अलग अलग विषय को लेकर अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से। और फिलहाल सुहानी सुबह कार्यक्रम में आप सभी जानते हैं सुनते हैं कि इस कार्यक्रम में अलग अलग तरह की बातें की जाती हैं, खासकर आज के दिन को लेकर, और इसके अलावा मौसम की जानकारी तो दी ही जाती है लेकिन इसके अलावा आज के इतिहास को लेकर भी होती है बहुत सी बात। तो ऐसी बहुत सी बातें साझा करूंगी आप सभी श्रोताओं के साथ जो कि जुड़ी हुई है आज के दिन को लेकर। तो चलिए शुरुआत हो चुकी है इस कार्यक्रम के एक बहुत ही प्यारे से तराने के साथ, इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई चिच्चोर फिल्म से। सुन रहे थे आप इस गीत को, गायक कलाकार यशुदास और हेमलता की आवाज़ में।

जिसमें बोल थे रविंद्र जैन के और संगीत भी उन्हीं का था। तो चलिए कार्यक्रम को और थोड़ा आगे बढ़ाएं और फिलहाल एक और फिल्मी तराना आप सभी सुनने वालों के लिए, और उसके बाद मौसम की जानकारी लेकर जल्द ही आती हूँ आप सभी श्रोताओं के पास। तब तक के लिए सुनते हैं एक प्यारा सा तराना, और फिलहाल किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ में क्यों ना इस गीत को सुना जाए। और ये जो गीत है बड़ा ही चंचल सा सुंदर सा गीत है जिसमें पूरे हफ्ते की दिनचर्या के बारे में बताया गया है। तो चलिए मैं और आप सुनते हैं, एंजॉय करते हैं इस गीत को, सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहानी सुबह, और आज की इस सुबह आप सुन रहे हैं आपके रेडियो दोस्त शर्मिष्ठा को।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा ये गीत आप सुन रहे थे, जिसमें बोल थे आनंद बख्शी के। अपनापन फिल्म से लिया गया था इस गीत को, जिसमें गायक कलाकार किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज में सुना आपने ये गीत। स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि समय हो चला है 7:15 और संग है आप आपके रेडियो दोस्त शर्मिष्ठा के, और सुबह का कार्यक्रम है जिसका नाम है सुहाने सुबह। और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून किया है 100.1 FM गोल्ड के अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी हमारा ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। तो चलिए, जो श्रोता अभी अभी जुड़े हैं इस कार्यक्रम के साथ हमारे साथ, उन सभी श्रोताओं को फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत। आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं, और चलिए इस कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और अन्य कई सारी जानकारियों के अंतर्गत फिलहाल मौसम की जानकारी से अवगत आप सभी श्रोताओं को करवाना चाहूँगी और बताना चाहूँगी कि अलीपुर मौसम विभाग की ओर से आखिर आज के मौसम के मिजाज को लेकर क्या कहा जा रहा है और क्या बताया जा रहा है कि आज के मौसम का हाल चाल आखिर क्या रहने वाला है। तो आमतौर पर तो यही कहा जा रहा है कि आसमान में जो है वो बादल छाए रहेंगे, और सिर्फ बादल छाए रहेंगे इतना ही नहीं, बल्कि हल्की से मध्यम बारिश या फिर गरज के साथ बौछारें पड़ने की बहुत ज़्यादा संभावना भी दी जा रही है। तो चलिए, अब आपको बताने का समय हो चला है कि अगले 24 घंटों के लिए आखिर अधिकतम और न्यूनतम तापमान कितना रहने वाला है। तो अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक था। इसके अलावा न्यूनतम तापमान 28.0 डिग्री सेल्सियस यानी कि सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया था। और अधिकतम आर्द्रता की अगर बात करें तो 94% और न्यूनतम आर्द्रता 67% रिकॉर्ड किया गया था। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में बारिश बिल्कुल हुई है, और बारिश को मापा गया है 6.0 डिग्री मिलीमीटर। इसके अलावा मछुआरे भाइयों के लिए आज के दिन से लेकर आने वाले समय के लिए भी सतर्क वार्ता जारी की गई है मौसम विभाग की ओर से। इसके बारे में भी साझा करूंगी इसी कार्यक्रम के माध्यम से, आप सभी श्रोताओं तक पहुँचाऊंगी इस सतर्क वार्ता को। लेकिन फिलहाल रुख करें एक फिल्मी गीत की ओर, क्योंकि जानकारियों का कार्यक्रम तो ये है ही, लेकिन जानकारी लेन देन के साथ साथ अगर गीत संगीत का माहौल भी बना रहे कार्यक्रम के साथ, बातों के साथ, तो कार्यक्रम का जो मज़ा है वो थोड़ा और बढ़ जाता है ना। और सुबह का समय है, और सुबह का समय जो है वो काफ़ी एनर्जी वाला समय होता है, और किसी भी हाल में सुबह का समय एनर्जी को लॉस करने या करवाने की बिल्कुल भी मूड में मैं नहीं हूँ। तो चलिए, आपका जो मूड है वो अच्छा बिल्कुल तरोताज़ा बना रहे, और इसीलिए सुनवाना चाहूँगी आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत, और उसके बाद रुख करेंगे मौसम

विभाग की ओर से और बताऊंगी आपको कि आखिर सतर्क वार्ता वो कौन सी है जो कि आज के दिन के साथ साथ आने वाले समय के लिए दी जा रही है। तो फिलहाल एक प्यारा सा तराना आप सभी श्रोताओं के लिए।

बिन बादल बरसात फिल्म से सुन रहे थे आप इस गीत को, जिसमें संगीत था हेमंत कुमार का और आवाज़ भी उन्हीं का। जी हाँ, लेकिन साथ में हेमंत कुमार के साथ लता मंगेशकर की आवाज़ में सुन रहे थे आप इस गीत को, जिसमें बोल थे शकील बदायूनी की। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बात कर रही थी मौसम विभाग की ओर से दी जाने वाली सतर्क वार्ता को लेकर, जो कि आज से लेकर आगे आने वाले समय के लिए भी है ये सतर्क वार्ता। तो चलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से साझा करूं उसी सतर्क वार्ता के बारे में। और कहा यह जा रहा है कि 24 से 26 अगस्त के दौरान उत्तरी बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटों के पास तेज हवाएं चलने की संभावना दी जा रही है। इन हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे होगी और कभी कभी ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 24 से 26 अगस्त के बीच

उत्तरी बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में न जाएं। इसके अलावा मौसम विभाग की ओर से एक और सतर्कवार्ता आज के दिन के लिए दी जा रही है, वो भी साझा करना चाहूंगी इसी कार्यक्रम के माध्यम से। और कहा यह जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के तट के लिए स्वेल सर्च अर्थात समुद्री लहरों के अचानक बढ़ने की चेतावनी दी जा रही है। 24 अगस्त यानी कि आज के दिन सुबह 11:30 तक 1.2 से लेकर 1.5 मीटर ऊंची और 15.0 से 18.0 सेकेंड की अवधि वाली स्वेल लहरों का अनुमान है। सलाह दी जाती है कि लहरों के अचानक बढ़ने की संभावना है, इसीलिए नावें पूरी सावधानी के साथ चलाएं और मनोरंजन करते समय भी उचित सावधानी बरतने की बात कही जा रही है। ये तो थी अलीपुर मौसम विभाग की ओर से दी जाने वाली सतर्क वार्ता आज के दिन के लिए और साथ ही साथ आने वाले समय के लिए भी सतर्क वार्ता दी गई थी अलीपुर मौसम विभाग की ओर से, जिसे साझा कर रही थी आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुहानी सुबह के माध्यम से। कार्यक्रम चल रहा है, गीत संगीत का साथ भी है और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे आज के दिन को लेकर, आज के दिन के इतिहास से जुड़ी घटनाओं के बारे में भी जिक्र करना चाहूंगी और साथ ही साथ बताना चाहूंगी कि वीर सैनिक, जी हाँ, जिन्होंने जन्म ग्रहण किया था आज के दिन, और उनकी वीर गाथा के बारे में भी बात करूंगी इसी कार्यक्रम के माध्यम से। तो चलिए, फिलहाल चुटकी की घड़ी बता रही है कि समय हो चला है 7:25, आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में और फिलहाल रुख करें एक प्यारे से गीत की ओर, जिसमें आवाज़ है लता मंगेशकर की, और इस गीत को सुनने के बाद हम बात करेंगे आज के दिन के इतिहास को लेकर या फिर आज के दिन के खास दिन को लेकर, कुछ ना कुछ तो जरूर साझा करूंगी आप सभी श्रोताओं के साथ। तो बने रहिएगा इस कार्यक्रम के साथ, क्योंकि इस कार्यक्रम का साथ है पूरे 8 बजे तक। और फिलहाल लता मंगेशकर।

सुन रहे हैं आप अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है सुहानी सुबह, जिसे आप सुनते हैं हर रोज इसी जगह इसी चैनल पर। और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून किया है 100.1 FM गोल्ड के अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारा ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। और आज की सुबह आपकी रेडियो दोस्त करती है दोबारा बहुत बहुत स्वागत आप सभी श्रोताओं का। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बताऊं आपको आज के खास दिन को लेकर, और बताना चाहूँगी कि आखिर किस तरीके से किस नाम से मनाया जाता है आज के दिन को। यूनाइटेड नेशंस डिकेड फॉर एक्शन ऑन न्यूट्रिशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र का पोषण संबंधी कार्रवाई दशक के तौर पर आज के दिन को मनाया जाता है। दिन आज ही का लेकिन साल 2025, जी हाँ 24 मार्च 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पोषण पर संयुक्त राष्ट्र दशक अर्थात पोषण दशक को जो मूल रूप से 2016 से लेकर 2025 तक था 2030 तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया। इस विस्तार का उद्देश्य यही था कि वैश्विक क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर 2030 तक कुपोषण के सभी रूपों को समाप्त करने की राजनीतिक गति को बनाए रखना और इसके उद्देश्यों को सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के साथ रेखांकित करना था।

आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में और फिलहाल बात करते हैं आज के दिन के इतिहास को लेकर। तो बात होती है 1600 की, साल 1600, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर सूरत के तट पर पहुंचा था। थोड़ा और जब आगे बढ़ते हैं इतिहास में तो 1690 की जब बात आती है, साल 1690, जी हाँ, वही हमारा प्रिय शहर कोलकाता, इसी से जुड़ा हुआ है इस वक्त का इतिहास। साल 1690 कलकत्ता शहर की स्थापना हुई थी। 24 अगस्त 1690 को भारत के शहरी परिदृश्य में एक नए सदस्य का स्वागत हुआ, जब कलकत्ता वाणिज्य, संस्कृति और औपनिवेशिक प्रभाव की एक उभरती हुई केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। इस आधारभूत क्षण ने कलकत्ता के एक जीवंत महानगर इतिहास और आधुनिकता के संगम स्थल के रूप में विकसित होने की नींव रखी।

मंचले फिल्म के इस गीत को आप सुन रहे थे गायक कलाकार किशोर कुमार की आवाज़ में। और इस गीत को सुनते सुनते फिर एक बार रुख करते हैं इतिहास के पन्नों की ओर। और सुहाने सुबह कार्यक्रम में फिलहाल बात हो रही है, चर्चा हो रही है आज के दिन के इतिहास को लेकर। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आना व्यापारिक उद्देश्यों से प्रेरित था, जो बाद में बदलकर साम्राज्यवाद बना। दरअसल 15वीं शताब्दी में यूरोप में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से भारत और पूर्व के देशों के प्रति यूरोपीय देशों में आकर्षण बढ़ा। यूरोप की व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्रांति ने वहां के व्यापारियों को नया बाजार तलाशने के लिए विवश कर दिया, तो सबसे पहले उनकी नज़र भारत पर पड़ी। इसी क्रम में पहले पुर्तगालियों का और फिर डच व्यापारियों का भारत में आगमन हुआ और उन्होंने परस्पर व्यापार को बढ़ावा दिया। साल 1608 में 24 अगस्त के दिन कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में अंग्रेजों का पहला जहाजी बेड़ा हेक्टर भारत पहुंचा। उस समय मुगल बादशाह जहांगीर का शासन था। कहने को तो ये एक बहुत ही सामान्य सी घटना थी और इससे पहले भी व्यापार के लिए जहाजी बेड़े यहाँ से वहाँ आते जाते थे, लेकिन इतिहास की इस एक घटना ने भारत के मकसद पर अंग्रेजों की गुलामी की काली रेखा

खींचती थी। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 1891 की। थॉमस एडिसन ने काइनेटोग्राफिक कैमरा के लिए पेटेंट प्राप्त किया था। आज ही के दिन और साल था 1891। यही तकनीक आगे चलकर चलचित्र में तब्दील हुई। साल 1969 की अगर बात करें तो वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति बने थे आज ही के दिन। साल 2006 की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो का ग्रह का दर्जा समाप्त किया था। दिन आज का 24 अगस्त साल 2006 को खगोलीय वर्गीकरण में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा प्लूटो को ग्रह से बैन ग्रह के रूप में फिर से वर्गीकृत किया गया। इस निर्णय ने खगोलीय पिंडों की प्रकृति और हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस की विकसित होती समझ के बारे में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी थी। और चलते चलते 2021 की अगर बात करें तो टोक्यो पैरालंपिक खेलों का आगाज हुआ था आज के दिन से साल 2021। आगे बढ़ते हुए बात करना चाहूंगी कुछ वीर सैनिकों के बारे में जिन्होंने जी जान लगाकर अपने देश के लिए सब कुछ किया। जी हाँ, वो सब कुछ जो कि एक वीर सैनिक करता है। बात करूंगी उन्हीं वीरों के बारे में, लेकिन फिलहाल एक फिल्मी गीत और समय हो चला है 7:45।

जल्दी से आगे बढ़ते हुए बात करूं उन दो साहसिक लोगों के बारे में जिनकी कहानियां आज भी लोगों के बीच में की जाती है, सुनी जाती है उनकी गाथा। 24 अगस्त को बीना दास और राजगुरु के साहस और बलिदान को याद किया जाता है। दोनों ने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई और युवाओं को राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा दी। 24 अगस्त का दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में खास महत्व रखता है। ये दिन उन दो महान क्रांतिकारियों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपने प्राण मातृभूमि को समर्पित कर दिए, वीरांगना बीना दास और शहीद शिवराम हरि राजगुरु। इन दोनों की गाथा आज भी युवाओं के खून को गर्माती है और राष्ट्रभक्ति का संचार भी किया जाता है। बीना दास जो कि निडर बंगाल की क्रांतिकारी बेटी रही हैं, चलिए उनके बारे में आपको कुछ बताऊं। बीना दास का जन्म आज के दिन 1911 बंगाल में हुआ था। समाज सेवी परिवार में पली बढ़ी बीना पर बचपन से ही स्वदेशी आंदोलन और क्रांतिकारी साहित्य का असर था। सुभाष चंद्र बोस उनके पिता के शिष्य रह चुके थे और अक्सर घर पर उनका आना जाना था। उनके विचारों ने बीना को गहराई से प्रेरित किया था। बीना की साहसिकता का अंदाजा एक छोटी सी घटना से लगाया जा सकता है। जब वॉयसराय की पत्नी के स्वागत में छात्रों को फूल बिछाने को कहा गया तो बीना ने इसे अपमानजनक मानकर बहिष्कार कर दिया था। उसी क्षण उन्होंने संकल्प लिया कि वे भारत की स्वतंत्रता के लिए प्राण न्योछावर कर देंगे। बाद में बैथ्यून कॉलेज और छात्र संघ से जुड़कर उन्होंने आत्मरक्षा और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया था। 6 फरवरी 1932 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उन्होंने बंगाल के गवर्नर सर स्टैनली जैक्सन पर गोलियां चलाई थी। हालांकि वे विफल रही लेकिन उनके साहस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। मीना को 9 साल के कठोर कारावास की सजा भी हुई थी। जेल में अमानवीय यातनाओं के बावजूद उन्होंने अपने साथियों का नाम नहीं बताया। जेल से बाहर आने के बाद भी वे आंदोलन में सक्रिय रहीं और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी गिरफ्तार हुईं। उनके योगदान को देखते हुए 1960 में पद्मश्री से सम्मानित उन्हें किया गया था। 1986 में उनका निधन हुआ लेकिन उनकी गाथा आज भी लोगों के बीच कही जाती है और आने वाली पीढ़ी को भी इनके संग्राम के बारे में बताया जाता है। अब आगे बढ़ते हुए राजगुरु के बारे में आपको कुछ बताऊं। राजगुरु हंसते हंसते फांसी पर झूलने वाले क्रांतिकारी थे। राजगुरु का जन्म आज के दिन साल 1908 को महाराष्ट्र के खेड़ में हुआ था। बचपन से ही वे मेधावी और राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत रहते थे और संस्कृत में निपुण और पहलवानी में भी माहिर राजगुरु ने 16 साल की उम्र में घर छोड़कर आज़ादी की लड़ाई को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह से हुई और वे उनके सबसे करीबी साथियों में शामिल हो गए थे। भगत सिंह ने कहा था, राजगुरु मेरा सबसे बड़ा साथी है लेकिन ये आत्म बलिदान की होड़ है जिसमें ईर्ष्या या फिर स्वार्थ नहीं, मासूमियत है। ये यारों का भी यार है। राजगुरु ने भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या की थी और इसी तरीके से 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और सुखदेव के साथ उन्हें भी फांसी दी गई थी। बीना दास और राजगुरु की कहानी

बताती है कि आज़ादी केवल एक राजनीतिक के बलिदान नहीं थी, बल्कि करोड़ों लोगों के बलिदान और त्याग का परिणाम थी। बीना का करेंगे या मरेंगे और राजगुरु का, मेरी मौत से हजारों राजगुरु उठ खड़े होंगे, जैसे शब्द आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं। ये तो थी इन साहसी लोगों की वीर गाथा, वाकई में जिनके बारे में आज भी जब हम बात करते हैं तो हमारे शरीर का जो खून है, युवाओं का जो खून है, वो फिर से एक बार गर्म हो उठता है और अपने देश के लिए चाहे कुछ भी हो जाए करने वाली जो बात है, जो जोश है, वो फिर से एक बार बोल उठती हैं। और इसी के साथ इतिहास के पन्नों को फिलहाल के लिए बंद करेंगे, लेकिन उससे पहले 1971 की बात करना चाहूँगी। भारत ने ओवल क्रिकेट टेस्ट में जीत हासिल की थी, दिन था जी का, जी हाँ, 24 अगस्त साल 1971 को खेल जगत और राष्ट्रीय गौरव का संगम हुआ, जब भारत ने ओवल क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया था। ये जीत क्रिकेट इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण थी, क्योंकि भारत ने इस प्रसिद्ध मैदान पर अपनी पहली जीत दर्ज की थी। और इसी के साथ आज के, चलिए, इतिहास के पन्नों को कुछ क्षण के लिए ही सही बंद करते हैं, क्योंकि स्टूडियो घड़ी जो है वो बता रही है कि आज के दिन का जो कार्यक्रम है सुहानी सुबह, उसे करना होगा यहीं पर समाप्त। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को करेंगे समाप्त, लेकिन फिलहाल के लिए, जी हाँ, दोबारा आपसे बात होगी, आपसे मुलाकात होगी, समय रहेगा ठीक 9:10 का, लेकर आऊँगी कार्यक्रम रसधारा, जो कि बातों और गीतों का कार्यक्रम होता है। और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून करना है आकाशवाणी कोलकाता का संजयिता चैनल। इसके अलावा इसी जगह दोबारा आपसे बात होगी, समय रहेगा 11:10, लेकर आऊँगी कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद, जो कि आप सभी का बहुत ही पसंदीदा कार्यक्रम रहा है, और बात करूंगी आज के इस कार्यक्रम में किसी खास को लेकर। तब तक के लिए ट्यून रहिएगा 100.1 FM गोल्ड के साथ, सुन रहे थे आपका अपना पसंदीदा जानकारी भरा कार्यक्रम सुहानी सुबह। और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून किया था 100.1 FM गोल्ड के अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी हमारे ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। और इसी के साथ एक प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के लिए छोड़े जाना चाहूंगी, और इस गीत को सुनते सुनते फिलहाल के लिए शर्मिशा लेगी इजाजत आप सभी श्रोताओं से, आप सभी सुनने वालों से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और शतरंज में भारत के ग्रैंडमास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में 200 से अधिक

0: व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। ये प्रतिनिधि विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ और मंगलवार तक ये विचार विमर्श जारी रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज और लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से इस फोरम का आयोजन हो रहा है। नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आएंगे और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही सहयोग को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक और नीति संबंधी रास्ते तलाशेंगे। इस फोरम को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला भी संबोधित करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से बुधवार तक कर्नाटक के मैसूरु में आदिवासी भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन आदिवासी भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और रसद संबंधी कई सेवाओं को कवर करेगा। इससे पहले प्रवक्ता मोहसिन रेजाई ने कहा था कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमरीकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य मौजूदा टकराव का केंद्र बिंदु बना हुआ है। ईरान का कहना है कि यह महत्वपूर्ण मार्ग बंद है और अनधिकृत टैंकर यातायात के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भारत के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित करना विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव मानसी सहाय ठाकुर और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी प्रशांत सिन्हा शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली ने कल अपने 11वें संडे बर्ड वॉक के साथ ट्री वॉक एट NZP का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया। ये कार्यक्रम चिड़ियाघर की चल रही नागरिक विज्ञान पहल का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य जैव विविधता के प्रलेखन, निगरानी और संरक्षण जागरूकता में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। प्रकृति प्रेमियों, छात्रों, वन्यजीव फोटोग्राफरों, जैव विविधता शोधकर्ताओं, इंटर्न और स्वयंसेवकों के साथ प्रकृति और संरक्षण में रुचि रखने वाले नागरिकों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। नीलसन IQ और वर्ल्ड डेटा लैब ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत में 2036 तक 10 करोड़ 80 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में ये संख्या 10 करोड़ 30 लाख है। रिपोर्ट में प्रतिदिन $90 से अधिक खर्च करने वाले लोगों को धनी उपभोक्ताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। 2026 में भारत में लगभग 2.60 करोड़ धनी उपभोक्ता होने का अनुमान है। अगले दशक में इनकी संख्या में 8.20 करोड़ की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में बढ़ती आबादी और मध्यम वर्ग के आधार पर भारत को मात्रा वृद्धि वाला बाजार बताया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है।

0: प्रदेश में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने बारिश और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में डिंडोरी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं विदिशा, सागर, रायसेन समेत 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल शाम दिल्ली से रीवा पहुंचकर अतिवृष्टि और राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने और राहत शिविरों में जरूरी इंतजाम के निर्देश दिए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सच्ची खुशी करुणा, आत्मसम्मान और संतोष से मिलती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत का सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना समाज में सहयोग और सद्भाव के बंधन को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि करुणा आत्मसम्मान को बढ़ावा देती है, जबकि संतोष इच्छाओं की पूर्ति की ओर ले जाता है। महाराष्ट्र में आज सुबह अमरावती जिला महिला अस्पताल की विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई में आग लगने की घटना में 3 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इकाई में समय से पहले जन्मे और गंभीर रूप से बीमार शिशुओं सहित लगभग 50 से 60 शिशुओं का इलाज चल रहा था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रे के रास्ते से पूरी होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 कल सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। 4 जुलाई को शुरू हुई इस यात्रा में 10 जत्थों में कुल 477 तीर्थयात्रियों ने कैलाश पर्वत और मानसरोवर के दर्शन किए। और अब खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
2: भारत आज कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 300 रन के स्कोर से आगे खेलेगा। इस पारी में देवदत्त पड्डीकल का लगातार दूसरा टेस्ट शतक और कप्तान शुभमन गिल का अर्धशतक शामिल है। श्रीलंका के असिथा फर्नांडो ने 3 विकेट लिए। भारत 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। बात शतरंज की। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनिजा ओपन 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया। हंगरी के नागी कनिजा में आयोजित टूर्नामेंट 9वें और अंतिम दौर में प्रणेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए जर्मनी के वादिम पेट्रोवस्की को हराया। तमिलनाडु के कराई कुडी के इस खिलाड़ी ने इजराइल के और ब्रॉनस्टीन, यूक्रेन के आंद्रेई वोलोकितिन और भारत के कार्तिक वेंकटरमन के साथ बेहतर टाई ब्रेक के आधार पर खिताब जीता। हंगरी में भारतीय दूतावास ने प्रणेश को खिताब जीतने पर बधाई दी। हॉकी की बात करें तो भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम दौर में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ऑस्ट्रेलिया ने अधिक गोल के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और भारत पूल ई में तीसरे स्थान पर रहा। अब भारतीय टीम गुरुवार को वैगनर हॉकी स्टेडियम में 5वें स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भारतीय दिव्यांग पुरुष क्रिकेट टीम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि टीम भारत इंग्लैंड पुरुष मिश्रित दिव्यांगता T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज 2026 के लिए इंग्लैंड दौरे से लौट आई है। श्री शाह ने कहा कि देश के लिए गौरव हासिल करने के लिए टीम के प्रयास और दृढ़ संकल्प भारत के युवाओं को प्रेरित करते हैं। पवित्र श्रावण मास की अंतिम सोमवारी के पावन अवसर पर आज पूरा झारखंड शिव भक्ति के अनूठे रंग में डूबा हुआ है। एक रिपोर्ट।
3: हर हर महादेव।
4: देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर पहुंचे लाखों कांवड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। तड़के मंदिर के कपाट खुलते ही पारंपरिक सरकारी पूजा के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए जलार्पण शुरू हुआ। अंतिम सोमवारी के विशेष महत्व को देखते हुए देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, AI आधारित कैमरे और डिजिटल हेल्पलाइन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
3: हर हर महादेव।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद विशाल। अंतरिक्ष क्षेत्र के 20 स्टार्टअप के संस्थापकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। स्टार्टअप्स प्रमुखों से प्रधानमंत्री की अपील जनसत्ता में है, अंतरिक्ष क्षेत्र में ऐसा माहौल बनाए कि दुनिया निवेश के लिए प्रेरित हो। वहीं अमर उजाला ने इसरो प्रमुख के हवाले से लिखा है, 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, पृथ्वी की निचली कक्षा में चरणबद्ध तरीके से होगा स्थापित, रक्षा में अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान पंजाब केसरी में है। पश्चिम बंगाल में 5 रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास के अवसर पर कहा।

भारत में वैश्विक पोत निर्माण का केंद्र बनने की क्षमता। अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर लोकसत्य का कहना है, पड़ोसियों पर भारत की नजर, आउटरीच सत्र के लिए नेपाल और बांग्लादेश को मिला न्योता। दोनों पड़ोसियों के साथ नई शुरुआत का बन सकता है अवसर। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का राहत भरा।

0: भारत टाइम्स लिखता है, यूजर की पहचान का सत्यापन अब होगा जरूरी, सरकार ने पहचान का नया बायोमेट्रिक लॉक लगाया।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स अपॉन कंट्री स्पेस सेक्टर टू क्रिएट एन इकोसिस्टम दैट अट्रैक्ट्स ग्लोबल स्पेस टैलेंट टू इंडिया। Union Home Minister Amit Shah to attend 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. External Affairs Minister S. Jayashankar to co-chair India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation in Moscow today. Iran decides to impose service fees on vessels transiting Strait of Hormuz. IMD issues orange alert for heavy rain in Chhattisgarh, Bihar, Odisha and East Madhya Pradesh today. And in chess, India's Grandmaster Pranesh M wins Kanizsa Open title in Hungary. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged the CEOs to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. He noted that an enabling environment must be created in the country where people from across the world see India as the preferred destination to build their careers and future in the space sector.
3: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
2: Mr. Modi said that India is highly competitive in terms of cost and have quality talent with a strong risk-taking capacity. The Prime Minister said that this combination gives the country the potential to establish itself rapidly as a leading player in the global space sector.
3: एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। कॉस्ट में हम कॉम्पिटिटिव है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं।
2: Union Home Minister Amit Shah will inaugurate the two-day 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. More from our correspondent.
4: The two-day conference will be held in hybrid format, combining physical and virtual modes. Over 850 officers from various security forces and police forces from across the country will deliberate on various contemporary matters and challenges to national security during the conference. This annual strategic forum enables coordination among intelligence, paramilitary and police leadership on internal security, border management and emerging threats. During the DGP-IGP conference in 2016, Prime Minister Narendra Modi had directed the security and police heads to hold the National Security Strategies Conference every year, with the objective of finding solutions to major national security challenges.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस के साथ 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सरगेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सच्ची खुशी करुणा, आत्मसम्मान और संतोष से मिलती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत का सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और रसद संबंधी कई सेवाओं को कवर करेगा। इससे पहले प्रवक्ता मोहसिन रेजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमरीकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। इस अवधि के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्र

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मोंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीक और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा भी करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ और मंगलवार तक ये विचार विमर्श जारी रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले देश की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। देश भर में श्रावण माह के चौथे और अंतिम सोमवार को भगवान शिव के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश का महाकाल मंदिर मध्य रात्रि 2:30 बजे खुल गया। भगवान महाकाल को पहले पंचामृत से स्नान कराया गया और फिर पवित्र राख से सुशोभित किया गया। वहीं झारखंड के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। विश्व प्रसिद्ध देवघर स्थित 12 पूजनीय ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ से लेकर राज्य की राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर तक हर हर महादेव के जयकारे पूरे राज्य में गूंज रहे हैं, जहां श्रद्धालु भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने उन्हें एक तीक्ष्ण कानूनी विशेषज्ञ, एक कुशल वक्ता और एक निपुण प्रशासक बताया। गृह मंत्री ने कहा कि अरुण जेटली ने प्रभावी संवाद के माध्यम से आम जनता तक सरकार की नीतियों को पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनीजा ओपन 2026 शतरंज प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया।

0: environmental and logistical provisions. According to a state broadcaster, this comes after the approval of the Article 3 strategic action to ensure the security and progress of the Strait of Hormuz plan. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 4 दिवसीय जापान दौरे पर। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। FIH महिला हॉकी विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ के बाद भारत टूर्नामेंट से बाहर। और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सरगेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा करेंगे। डॉ जयशंकर कल रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मॉस्को पहुंचे। भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक और मजबूत साझेदारी है। अक्टूबर 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी घोषणा पर हस्ताक्षर के बाद से भारत रूस संबंधों में राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और संस्कृति सहित लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के उच्च स्तर के साथ एक गुणात्मक रूप से नयापन आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं जो विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल टोक्यो में भारत के विकास में लंबे समय से भागीदार रहे प्रमुख जापानी समूहों और औद्योगिक घरानों के शीर्ष नेतृत्व के साथ कई बैठकें करेंगे। इसके अलावा वे 1500 से अधिक जापानी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वोच्च निकाय जापान व्यापारिक महासंघ केईदान रेन के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेंगे। श्री गोयल जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्री अकाजावा रोयोसुई के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे। नागोया में मंत्री सुकेरेन और नागोया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ एक रोड शो का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि ये दौरा दोनों देशों की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के प्रति उनकी महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं विकास नापा।
1: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ। ये विचार विमर्श मंगलवार तक जारी रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज और लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से इस फोरम का आयोजन हो रहा है। नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आएंगे और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही सहयोग को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक और नीति संबंधी रास्ते तलाशेंगे। इस फोरम को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला भी संबोधित करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात कर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की है। भारतीय उच्चायोग ने बताया कि इस बैठक के बाद तेल और गैस सहयोग पर सरकार से सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन और इंडियन ऑयल कॉर्प लिमिटेड तथा मॉरिशस के स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के बीच एक समझौते का आदान प्रदान किया गया। चंडीगढ़ पुलिस ने

कल सेक्टर 36 पुलिस स्टेशन में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4B और धारा 5 के तहत मामला दर्ज किया। ये कार्रवाई चंडीगढ़ में बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े संदिग्धों की गतिविधियों के बारे में मिली खास खुफिया जानकारी के आधार पर की गई है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज

मिस्टर इंडिया फिल्म से सुन रहे थे आप इस गीत को, जिसमें आवाज़ दी थी गायक कलाकार किशोर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति ने। और इस गीत को सुनकर तो ज़रूर आपको ये अंदाज़ा हो ही चुका होगा कि आज के इस कार्यक्रम में आखिर हम किन्हें लेकर बात करने वाले हैं। और अभी भी अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो चलिए मैं बताऊँ आपको कि आज के इस कार्यक्रम में बातें होंगी बॉलीवुड के मिस्टर इंडिया, यानी कि जाने माने सुपरहिट और अधिकतर लोगों के पसंदीदा हीरो अनिल कपूर को लेकर आज के इस कार्यक्रम में हम करने वाले हैं बात। और अगर बतौर लीड हीरो की अगर मैं बात करूं तो अनिल कपूर ने बतौर लीड एक्टर 1980 में तेलुगु फिल्म वामसा वृक्षम से डेब्यू उन्होंने शुरू किया था। और हालांकि इससे पहले वे 1979 में डायरेक्टर उमेश मेहरा की फिल्म हमारे तुम्हारे में कैमियो यानी कि छोटे रोल में वे नजर आए थे। और उन्होंने 1979 से लेकर 1982 तक बॉलीवुड की चार फिल्में, जिसमें हमारे तुम्हारे, एक बार कहो के अलावा हम पांच और शक्ति जो कि रिलीज हुई थी 1982 में, इन फिल्मों में बतौर सपोर्टिंग एक्टर अनिल कपूर नजर आए थे। इसके बाद साल 1983 में फिल्म वो सात दिन के जरिए उन्होंने बतौर लीड एक्टर बॉलीवुड में कदम रखा था। शायद कम ही लोग जानते होंगे कि ये मूवी तमिल फिल्म अंधा एजु नाटिकल का रीमेक थी। बातें होंगी और भी बहुत ज़्यादा आज के हमारे पसंदीदा स्टार अभिनेता

11:27 संज्ञा आप शर्मिशा के और सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है लो आ गई उनकी याद। और आज के इस कार्यक्रम में बात हो रही है जाने माने अभिनेता हम सब के चहेते एक्टर अनिल कपूर को लेकर। साल 1988 की बात है जब विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म परिंदा में जैकी श्रॉफ ने अनिल कपूर के बड़े भाई का किरदार निभाया था। दरअसल अनिल कपूर की ही ये इच्छा थी कि डायरेक्टर इस फिल्म में जैकी श्रॉफ को उनके बड़े भाई का रोल दें। रियल में असलियत में जैकी श्रॉफ अनिल कपूर से एक साल छोटे हैं। अनिल कपूर का जन्म साल 1956 का है और जबकि जैकी श्रॉफ का जन्म हुआ था साल 1957 में। वहीं 1994 की सुपरहिट फिल्म 1942 अ लव स्टोरी में रघुवीर यादव ने अनिल कपूर के दोस्त का किरदार निभाया था। लेकिन क्या आपको पता है कि अनिल कपूर की जगह सबसे पहले किस एक्टर का नाम सजेस्ट किया गया था? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको बताऊं कि अनिल कपूर से पहले इस फिल्म के लिए शाहरुख खान को ये रोल ऑफर किया गया था, लेकिन किसी वजह से उन्होंने इस रोल को निभाने से इनकार कर दिया और उसके बाद तो इतिहास है ना। हम सब जानते हैं कि अनिल कपूर से जुड़ी ये जो फिल्म है 1942 अ लव स्टोरी सिर्फ एक कहानी ही नहीं बल्कि वाकई में जमा दिलों की धड़कन बन चुकी थी उस दौर में। और सिर्फ उस दौर की ही बात मैं क्यों करूं, बल्कि इस फिल्म के जितने भी गाने हैं आज भी जब सुने सुनवाए जाते हैं तो वाकई में जमा दिलों की जो धड़कन है वो फिर से एक अलग रफ्तार पकड़ लेती है। और चलिए इस कार्यक्रम की रफ्तार भी धीमे धीमे आगे बढ़ रही है और जब बात होती है हम सब के चहेते पसंदीदा कलाकार अभिनेता को लेकर तो वाकई में दिलों के धड़कन के साथ कार्यक्रम की जो रफ्तार है वो भी अपने ही अलग स्पीड में चलने लगती है। तो फिलहाल शुरू की घड़ी बता रही है कि 11:10 है और किस तरीके से काफ़ी सारा समय इस कार्यक्रम का गुजर गया हम सब की के चहेते कलाकार की बातों को करते करते, और अभी भी काफ़ी सारा समय हमारे पास बचा हुआ है और इस समय का उपयोग करते हुए बात करेंगे आज के हमारे हम सभी के चहेते अनिल कपूर से जुड़ी कुछ छोटी छोटी लेकिन मज़ेदार बातें साझा करूँगी इस कार्यक्रम के ज़रिए। तो फिलहाल रुख करूँ एक बहुत ही प्यारे से तराने की तराने को आप सभी श्रोताओं तक पहुंचाना चाहूँगी। सुरेश वाडकर और आशा भोंसले की आवाज़ में इस गीत को आप सुनेंगे जो कि लिया गया है फिल्म परिंदा से। आर डी बर्मन का संगीत है इस गीत में। तो चलिए

फिल्म परिंदा से सुन रहे थे आप इस रोमांटिक से ट्रैक को। और अगर अनिल कपूर की सबसे प्रसिद्ध और बेहतरीन हिंदी फिल्मों की बात करें तो इसमें भी ना अलग अलग तरह की कैटेगरीज में इन फिल्मों को वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें आइकॉनिक और सुपरहिट फिल्मों की अगर बात करें तो सबसे पहले नाम आता है फिल्म मिस्टर इंडिया का, जो कि बनी थी 1987 में, एक अदृश्य घड़ी पर आधारित ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसमें उनका मिस्टर इंडिया अंदाज और अमरीश पुरी का मोगैम्बो अमर हो चुका था। और इसके बाद 1988 में फिल्म बनी थी तेजाब, मुन्ना की भूमिका में उनका एक्शन और माधुरी दीक्षित के साथ एक दो तीन गाना ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था। उसके बाद साल 1989 में आई थी फिल्म राम लखन। लखन के रूप में उनकी ऊर्जा और माय नेम इज लखन गीत ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बना दिया था। बेटा बनकर आई थी साल 1992 में, पारिवारिक और भावनात्मक ड्रामा जिसमें उनका और माधुरी का अभिनय और गाना धक धक करने लगा बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। इसके अलावा गंभीर और प्रशंसित फिल्मों की अगर बात करें तो 1989 में फिल्म बनी थी परिंदा विद विनोद चोपड़ा की। ये क्राइम ड्रामा फिल्म भारतीय ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इसके बाद अगर फिल्म विरासत की बात करें तो बनी थी साल 1997 में, गांव की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में अनिल कपूर के अभिनय को क्रिटिक्स ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। इसके बाद जी हाँ, असली हीरो के रूप में अनिल कपूर नजर आए थे कौन से फिल्म में बताइए तो, जी हाँ साल 2001 में बनी थी ये फिल्म और जिसे टाइटल दिया गया था नायक द रियल हीरो। एक दिन में मुख्यमंत्री के रूप में उनका ये किरदार आज भी राजनीतिक व्यवस्था पर बनी बेहतरीन फिल्मों में एक माना जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए कॉमेडी और मल्टी स्टारर फिल्मों की तो उसके बारे में भी बात करूंगी, उन फिल्मों के बारे में भी चर्चा होगी इसी कार्यक्रम में। लेकिन फिलहाल जिन फिल्मों के बेहतरीन फिल्म सिर्फ फिल्में नहीं बल्कि बेहतरीन फिल्मों की बात मैं कर रही थी, उनमें से एक आध गाने सुनना तो बनता है ना। तो चलिए एक बहुत ही प्यारा सा तराना जिसमें आवाज़ है उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की, ये गीत आप सभी सुनने वालों के लिए जुड़े हुए हैं आप अपने पसंदीदा कार्यक्रम के साथ जिसका नाम है लो आ गई उनकी याद। और आज के इस कार्यक्रम में, आज की इस कड़ी में बात हो रही है हम सभी के चहेते अभिनेता अनिल कपूर को लेकर।

हाँ, तो मैं बात कर रही थी अनिल कपूर से जुड़ी कुछ और फिल्मों की जो कि जुड़ी हुई है कॉमेडी और मल्टी स्टारर की तरफ। और इन फिल्मों की अगर बात करूँ तो साल 2005 में फिल्म बनी थी जिसका नाम तय किया गया था नो एंट्री। उनकी कॉमिक टाइमिंग और बेहतरीन अभिनय से सजी एक सुपरहिट कॉमेडी फिल्म थी जिसका टाइटल था नो एंट्री। साल 2005 में रिलीज़ हुई थी ये फिल्म और उसके ठीक दो साल बाद यानी कि साल 2007 में एक और फिल्म बनी थी जिसमें दोबारा हमने अनिल कपूर के बेहतरीन अभिनय को देखा था। और इस फिल्म में मजनू भाई का उनका जो कॉमिक रोल था वो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और मीम्स और कॉमेडी प्रेमियों के बीच में उनका ये जो रोल था ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय बना था। और इस फिल्म के टाइटल की अगर मैं बात करूं तो नाम दिया गया था वेलकम, जो कि रिलीज़ हुई थी साल 2007 में। और जब अनिल कपूर के अलग अलग किरदारों को लेकर बात हो रही है तो साल 1985 में बनी फिल्म साहिब के बारे में तो बात करना बनता ही है ना, क्योंकि अनिल गांगुली द्वारा निर्देशित एक प्रसिद्ध पारिवारिक हिंदी ड्रामा फिल्म थी जिसमें अनिल कपूर, अमृता सिंह, उत्पल दत्त और राखी गुलजार ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी इस फिल्म में। ये फिल्म इसी नाम से बनी 1981 की एक बंगाली फिल्म का रीमेक थी जो कि परिवार के एक सबसे छोटे और उपेक्षित बेटे के त्याग और संघर्ष की भावनात्मक कहानी बयां करती है। आज भी इस

फिल्म की कहानी कह लीजिए या फिर इस फिल्म के हर एक गीत कह लीजिए काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। तो चलिए, जिस खूबसूरत और पारिवारिक फिल्म की मैं बात कर रही हूँ, उस फिल्म का एक गाना आप सभी तक पहुँचाना चाहूँगी, बप्पी लहरी और एस जानकी की आवाज़ में है ये गीत। तो चलिए, फिल्म शाहिद से ये गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

अनिल कपूर एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने अनगिनत फिल्मों में अपने अलग अलग किरदार के जरिए ये यकीन दिलाया लोगों को कि वाकई में अनिल कपूर एक बेहतरीन अभिनेता हैं। लेकिन उनकी इतनी सारी फिल्मों को लेकर सिर्फ और सिर्फ एक कार्यक्रम में बात करना शायद संभव नहीं, और इसीलिए उनके बाकी की फिल्मों को लेकर किसी और कार्यक्रम में बातें होंगी। और फिलहाल उनके अंदर का एक और हिडन टैलेंट, जी हाँ, उसके बारे में जाने से पहले आप सभी श्रोताओं तक इस बात को पहुंचाना चाहूंगी कि फिल्म में गाना भी गा चुके हैं अनिल कपूर।

और साल 1986 में फिल्म आई थी चमेली की शादी, पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, बॉलीवुड फिल्म थी ये, जिसमें अनिल कपूर ने न केवल लीड रोल निभाया था इस फिल्म में, बल्कि इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग भी उन्होंने ही गाया था। बतौर सिंगर भी अनिल कपूर का ये पहला मौका था, और इस तरीके से अनिल कपूर ने सिर्फ और सिर्फ अभिनय की दुनिया में ही अपना एक नाम नहीं कमाया, बल्कि संगीत की दुनिया में भी उन्होंने अपने आप को बखूबी आजमाया है, और सिर्फ आजमाया नहीं बल्कि सफल भी वे रह चुके हैं। तो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। अनिल कपूर को लेकर आज के इस कार्यक्रम में हो रही थी बात, और जाने से पहले मनहर और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारा सा तराना आप सभी सुनने वालों के लिए। इस गीत को सुनते सुनते शर्मिष्ठा को दीजिएगा इजाज़त आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। मिल रहे हूँ बहुत जल्द, समय रहेगा ठीक 12 बजे का, और दोबारा मुझे सुनने के लिए आपने ट्यून करना है आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। लेकर आऊँगी कार्यक्रम दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम सुरभि, तब तक के लिए ट्यून रहिएगा 100.1 FM गोल्ड के साथ। सुन रहे थे कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आंध्र प्रदेश की यात्रा पर हैं। वे आज एलोरा जिले के मुसनूरू पहुंचे। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति कुछ ही देर में गवर्नमेंट पॉपकॉर्निका परिसर में भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज का अनावरण करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय यह सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न

0: सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री देनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापानी कंपनियों से भारत में अपने कारोबार का विस्तार करने और सुजुकी जैसी सफलता की कहानियां बनाने का आह्वान किया। जापान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जापान इंडिया बिजनेस कंसल्टेटिव कमेटी और भारतीय दूतावास के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत का युवा कार्यबल, बढ़ती अर्थव्यवस्था और दीर्घकालिक विकास की महत्वाकांक्षाएं जापानी व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती हैं। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ। ये मंगलवार तक रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने बताया कि यह शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रजाई ने कहा था कि हुर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हुर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। देश भर में श्रावण माह के चौथे और अंतिम सोमवार को भगवान शिव के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरा राज्य शिव भक्ति के रंग में डूबा हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: अंतिम सोमवारी के विशेष महत्व को देखते हुए देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, एआई आधारित कैमरे और डिजिटल हेल्पलाइन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: भारतीय वाणिज्य दूतावास ने न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन में हुई गोलीबारी की घटना में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वाणिज्य दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। दूतावास ने कहा कि वे परिवार के संपर्क में हैं और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। इसे देखते हुए बिहार सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से फरक्का बराज के सभी गेट खोलने का अनुरोध किया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच जारी है। चायकाल तक भारत ने 6 विकेट पर 419 रन बना लिए हैं। भारत ने आज 300 रन से आगे खेलना शुरू किया। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today urged Japanese companies to expand their operations in India and create success stories similar to Suzuki, and said the country would like to see 1,580 Suzukis emerge from the Japanese firms operating in India. Addressing a roundtable meeting with the Japan-India Business Consultative Committee of the Japan Chamber of Commerce and Industry and the Embassy of India, Goyal said India's young workforce, expanding economy and long-term growth ambitions offer significant opportunities for Japanese businesses. Goyal said India and Japan

0: कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इन देशों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद 15 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर है। उन्होंने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्ष में हस्ताक्षरित 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। ये 9 समझौते 60 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं और 38 विकसित देशों को अपने दायरे में लाते हैं। श्री गोयल ने कहा कि बढ़ते आर्थिक संबंध भारत और जापान के बीच संतुलित व्यापार की दिशा में अग्रसर होंगे। श्री गोयल 200 से अधिक प्रतिनिधियों के एक बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: We have about 80 companies.
2: हमारे प्रतिनिधिमंडल में उत्तरी भारत से लगभग 80 कंपनियां हैं, पश्चिमी भारत से 68,

0: वर्णिका परिसर में इस बीज का शुभारंभ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत लंबे समय से उच्च गुणवत्ता वाले पॉपकॉर्न मक्का के लिए आयातित हाइब्रिड बीज तकनीक पर निर्भर रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान का उल्लेख करते हुए पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और नमो ड्रोन दीदी जैसी केंद्र सरकार की पहलों की सराहना की।
1: I appreciate both the state and the central governments for their various schemes for safeguarding the interest of farmers, like PM Kisan Samman Nidhi, PM Fasal Bima Yojana, Kisan Credit Card schemes, and many others. National Food Security and Nutrition Mission also ensures seed certification, integrated nutrient and pest management, on farm mechanization assistance and field demonstrations for maize farmers.
0: सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए मामले की जांच राज्य से सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा।
2: 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से ज्यादा अधिकारी शामिल होंगे। ये अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मौजूदा मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। यह वार्षिक बैठक देश की खुफिया एजेंसियों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को चर्चा का एक मंच प्रदान करती है, जिसमें आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों जैसे अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। साल 2016 में हुई डीजीपी आईजीपी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा और पुलिस प्रमुखों से हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आयोजित करने का निर्देश दिया था। इसका उद्देश्य देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का समाधान तलाशना है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर काम कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव और विशेषज्ञों की राय को शामिल किया जाता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेलवे ने रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसके अंतर्गत पेयजल टैंक और पेयजल को स्वच्छ बनाने की प्रणाली को साफ और कीटाणु मुक्त किया जाएगा।
3: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान जोनल रेलवे जल स्रोतों, जल शोधन और फिल्ट्रेशन संयंत्रों, भूमिगत और ऊपरी टैंकों, पीवीसी टैंकों, वाटर बूथ, नलों और पेयजल वितरण केंद्रों का व्यापक निरीक्षण करेंगे। साथ ही टैंकों के ढक्कन अच्छी तरह बंद रखने और वेंट तथा ओवरफ्लो पाइपों को पक्षियों, जानवरों और शैवाल से सुरक्षित रखने के उपाय किए जाएंगे। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संत शिरोमणि गुरु रविदास के योगदान को याद करते हुए कहा है कि गुरु रविदास के विचारों और कार्यों ने सामाजिक बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया और सामाजिक समरसता की नींव मजबूत की। नई दिल्ली में समरसता संकल्प अभियान को संबोधित करते हुए श्री नवीन ने कहा कि गुरु रविदास जी के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए भाजपा ने यह समरसता अभियान शुरू किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की भी सराहना की।
4: मुख्यमंत्री रहते हुए, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया, फिर गुजरात के निर्माण में अपनी ताकत दी और आज हम कह सकते हैं इस देश को नव निर्माण के दिशा में लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको ये विश्वास है कि 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा। 2047 में भारत कहीं ना कहीं विकसित भारत के सपनों को हम साकार करेंगे।
0: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना पीएमएफएमई से अब तक 2 लाख से अधिक व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम लाभान्वित हुए हैं। नई दिल्ली में आज पीएमएफएमई सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि लाभार्थियों में करीब 80% पहली बार उद्यम शुरू करने वाले लोग हैं और इनमें 44% महिलाएं हैं। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों से उत्पादों की गुणवत्ता से कोई समझौता न करने का आग्रह किया।
5: पीएमएफएमई की है हमारी स्कीम, जिसके माध्यम से हम लोग यंग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने का काम

0: करते हैं जो संभवतः अपने छोटे प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में बदल कर उसमें वैल्यू ऐड कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनको हम लोग लेकर जाने में उनकी सहायता करते हैं। पूरी तरीके से टेक्निकल हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की जाती है, पैकेजिंग को लेकर उनकी मदद की जाती है, और आज जो हम लोगों ने MOUs साइन किए हैं अबीडा के साथ, जिसके माध्यम से ग्लोबल मार्केट को कैसे ये एक्सप्लोर कर सकते हैं।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलेला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ये बैठक लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक और मजबूत साझेदारी है। अक्टूबर 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा पर हस्ताक्षर के बाद से भारत रूस संबंधों में राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति सहित लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के उच्च स्तर के साथ एक गुणात्मक रूप से नयापन आया है। रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग गतिविधियों पर नियमित बातचीत के साथ साथ अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक और आधिकारिक दोनों स्तरों पर कई संस्थागत संवाद आयोजित किए जाते हैं। डॉक्टर जयशंकर कल रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मॉस्को पहुंचे थे। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है, पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने बताया कि यह शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद GCC ने दोनों पक्षों के बीच सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सऊदी अरब में भारत के राजदूत विपुल और GCC के महासचिव जासिम मोहम्मद अल बुदैवी के बीच हुई बैठक में मुक्त व्यापार समझौते FTA पर बातचीत भी की गई। फरवरी में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत का मार्गदर्शन करने वाले संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से फोन पर बातचीत कर उन्हें स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया है। श्री चौधरी ने कहा है कि फरक्का बैराज के सभी गेट खोलने से गंगा के पानी का प्रवाह सुचारू हो सकता है और बिहार में बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल तक अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगेय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंध्र

कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के गांव में आज भूमि धंसने और मकानों में दरारें आने के बाद एहतियात के तौर पर 3 परिवारों के 10 सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया है कि चेनाब नदी के किनारे तहसील राजगढ़ के कुल्थी चक्का कुंड इलाके में भूमि धंसने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच बारिश के कारण रोक दिया गया है। खेल रोके जाने तक भारत ने 8 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 278 अंक गिरकर 77,263 और निफ्टी 84 अंक गिरकर 24,168 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत। ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को अपने दायरे में ले आएगा। इससे भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इन देशों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद 15 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर है। श्री गोयल 4 दिन के दौरे पर जापान गए हैं। उनके साथ 200 सदस्य प्रतिनिधिमंडल भी गया है। श्री गोयल ने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्ष में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ते आर्थिक संबंध भारत और जापान के बीच संतुलित व्यापार की दिशा में अग्रसर होंगे।
1: We have about 80 companies.
2: हमारे प्रतिनिधि मंडल में उत्तरी भारत से लगभग 80 कंपनियां हैं, पश्चिमी भारत से 68, दक्षिणी भारत से 34 कंपनियां हैं और पूर्वी भारत से लगभग 28 कंपनियां हैं। ये हमारे प्रतिनिधि मंडल की विविधता को दर्शाती है।
1: Only to reflect that a wide diversity joined this delegation.
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतोरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज के विकास को कृषि में आत्मनिर्भरता तथा देश में विकसित नवाचार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु में आगोमे पॉपकॉर्निका परिसर में इस बीज का शुभारंभ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत लंबे समय से उच्च गुणवत्ता वाले पॉपकॉर्न मक्का के लिए आयातित हाइब्रिड बीज तकनीक पर निर्भर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिवसीय यह सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा।
3: 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से ज्यादा अधिकारी शामिल होंगे। ये अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मौजूदा मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। यह वार्षिक बैठक देश की खुफिया एजेंसियों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को चर्चा का एक मंच प्रदान करती है।

0: जिसमें आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों जैसे अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। साल 2016 में हुई डीजीपी आईजीपी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा और पुलिस प्रमुखों से हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आयोजित करने का निर्देश दिया था। इसका उद्देश्य देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का समाधान तलाशना है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर काम कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव और विशेषज्ञों की राय को शामिल किया जाता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना पीएमएफएमई से अब तक 2 लाख से अधिक व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम लाभान्वित हुए हैं। नई दिल्ली में आज पीएमएफएमई के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि लाभार्थियों में करीब 80% पहली बार उद्यम शुरू करने वाले लोग हैं और 44% महिलाएं हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच बारिश के कारण रोक दिया गया है। इससे पहले भारत ने 8 विकेट पर 475 रन बनाए। ऋषभ पंत ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को अपने दायरे में ले आएगा। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। श्री गोयल ने कहा कि भारत और जापान के व्यापारिक प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते हुए हैं। श्री गोयल ने कहा कि बढ़ते आर्थिक संबंध भारत और जापान के बीच संतुलित व्यापार की दिशा में अग्रसर होंगे।
1: We have about 80 companies.
2: हमारे प्रतिनिधिमंडल में उत्तरी भारत से लगभग 80 कंपनियां हैं, पश्चिमी भारत से 68, दक्षिणी भारत से 34 कंपनियां हैं और पूर्वी भारत से लगभग 28 कंपनियां हैं। ये हमारे प्रतिनिधिमंडल की विविधता को दर्शाती है।
1: Only to reflect that a wide diversity joined this delegation.
0: श्री गोयल 200 सदस्यीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ 4 दिन की जापान यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री देनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज के विकास को कृषि में आत्मनिर्भरता और देश में विकसित नवाचार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनूर में आज गवर्नमेंट पॉपकॉर्निक परिसर में इस बीज का शुभारंभ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत लंबे समय से उच्च गुणवत्ता वाले पॉपकॉर्न मक्का के लिए आयातित हाइब्रिड बीज तकनीक पर निर्भर रहा है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना PMFME से अब तक 2 लाख से अधिक व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम लाभान्वित हुए हैं। नई दिल्ली में आज PMFME सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि लाभार्थियों के करीब 80% पहली बार उद्यम शुरू करने वाले लोग और 44% महिलाएं शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुआ UPI आज देश में डिजिटल भुगतान का प्रमुख माध्यम बन गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2016-17 में UPI के जरिए केवल 1.78 करोड़ लेन देन हुए थे। वर्ष 2025-26 में इनकी संख्या बढ़कर 24,162 करोड़ से अधिक हो गई है। इसी अवधि में लेन देन की कुल राशि 7,000 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 314 लाख करोड़ रुपए हो गई है। UPI अब भारत के साथ साथ दुनिया के अन्य 11 देशों में भी काम कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए मामले की जांच राज्य से CBI को सौंपने की मांग की गई थी।

0: like a rhyme with no reason.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मदुरोव ने आज मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जटिल अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बावजूद भारत रूस संबंध लगातार मजबूत और व्यापक हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग आपसी हितों और विश्वास पर आधारित है। डॉक्टर जयशंकर कल दो दिन की रूस यात्रा पर मॉस्को पहुंचे थे। वे रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वर्ष 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प और पूर्वी लद्दाख में लंबे समय तक चले सैन्य गतिरोध के बाद भारत और चीन के संबंधों में काफी तनाव आया था। हालांकि इसके बाद दोनों देशों ने संबंधों को स्थिर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से तक पहुंच बना लेगा। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूह तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। श्री गोयल ने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ते आर्थिक संबंध भारत और जापान के बीच संतुलित व्यापार की दिशा में अग्रसर होंगे।
2: We have about 80 companies.
3: हमारे प्रतिनिधि मंडल में उत्तरी भारत से लगभग 80 कंपनियां हैं, पश्चिमी भारत से 68, दक्षिणी भारत से 34 कंपनियां हैं और पूर्वी भारत से लगभग 28 कंपनियां हैं। ये हमारे प्रतिनिधि मंडल की विविधता को दर्शाती है।
2: Only to reflect that a wide diversity joined this delegation.
1: भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय कार्यालय ने बताया है कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। इन पर लुधियाना में ग्रेनेड हमले की नाकाम साजिश में भी शामिल होने का आरोप है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये सुरक्षित और मजबूत भारत के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को दर्शाता है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2,60,00,000 रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। निदेशालय ने दोनों आरोपियों को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कल गिरफ्तार किया। दोनों को गोवा की विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया। मेघालय की सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के पूर्व सांसद WR खारलुखी ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया।

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड पर।

0: के हर पल
1: पल पल गिनिए जरूर और इसी तरह दिन आप बिताइए यकीनन, लेकिन दिल में उत्साह हो, उच्छास हो, उमंग हो, उम्मीद हो, और इस तरह से हर एक पल गिन गिन कर भी अगर आप बिताते हैं तो जिंदगी जो है वो खुशगवार हो जाएगी। हंसने हंसाने, खुशियां बांटने और आपका दिल लुभाने एक बार फिर से हम हाजिर हैं लेकर चाय और क्लासिक्स। चैनिका है आपके साथ ओनली ऑन एफएम गोल्ड कोलकाता। चाय और क्लासिक्स में चाय की चुस्कियों का मजा लेती रहती। सबसे पहले चलिए जान ले आज के इस दिन के बारे में। पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारे देश से जुड़ी एक बेहद खास बात है जो आज के दिन घटित हुई, और वो घटना अगर ना हुई होती तो मुझे लगता है कि हम अभी जिस भी तरीके से जी रहे हैं, जो भी माहौल है, जिस तरह का हमारा अवस्थान है दुनिया में, वो कुछ और होता। अच्छा, 15वीं शताब्दी में यूरोप में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से भारत और पूर्व के देशों के प्रति यूरोपीय देशों में आकर्षण बढ़ा। उन्हें लगा कि भाई हम यहाँ नहीं रहेंगे, अपने घर में तो बहुत रह लिए, अब जाकर पड़ोस में या बहुत दूर जो पड़ोस है ही नहीं हमारा, वहां जाकर क्यों ना घर बसाया जाए। तो यूरोप की व्यापारिक और औद्योगिक क्रांति ने वहां के व्यापारियों को नया बाजार तलाशने के लिए मजबूर कर दिया। अब बहुत सारी चीजें हम बना रहे हैं लेकिन खरीदेगा कौन, तो ये थी क्राइसिस उनकी। तो जगह ढूंढ रहे हैं, मार्केट ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले उनकी जो नजर है वो आकर हम पर पड़ गई। देखिए, और कोई मिला नहीं है आपको दुनिया में, इंडिया ही मिला बस आपको। और भारत पर नजर पड़ी तो बस व्यापार जो है उनका हमारे साथ बढ़ा। तो इस सिलसिले में सबसे पहले पुर्तगालियों का और फिर डच व्यापारियों का भारत में आना हुआ और उन्होंने परस्पर व्यापार को बढ़ाया। 1608 में 24 अगस्त यानी आज ही के दिन कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में अंग्रेजों का पहला जहाजी बेड़ा हेक्टर भारत पहुंचा, और उस समय मुगल बादशाह जहांगीर का शासन था। और कहने को तो एक सामान्य सी घटना थी, एक व्यापारी जहाज आया है, खरीद फरोख्त होगी और क्या होगा। इससे पहले भी तो व्यापार के लिए जहाजी बेड़े यहां से वहां आते जाते थे, लेकिन इतिहास की इस एक घटना ने भारत का इतिहास बदल कर रख दिया। अच्छा, मान लीजिए, मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले कि अगर ये घटना ना हुई होती, मान लीजिए अगर ये जहाज भारत के तट पर पहुंच ही नहीं पाता, जैसे कोलंबस ने कितनी बार भारत को ढूंढने के लिए यात्रा की पर कभी भी नहीं पहुंच पाया, तो ये जहाज भी ना पहुंचता तो शायद आज हमारा जो देश है वो एक अलग मकाम पर होता। क्या लगता है आपको? हाँ, अगला गाना सुनते सुनते सोचिए इस विषय पर। जैनिका है हाजिर ओनली ऑन एफएम गोल्ड कोलकाता। स्टूडियो की घड़ी में अभी जो फिलहाल समय वो है 5:23 और 34 सेकंड्स।

0: 100.1 FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: प्यारे श्रोताओं, परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। 12 सितंबर 2019 को शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना देश भर में सभी भूमिधारक छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है और इस पहल के तहत जो पात्र हैं वो छोटे और सीमांत किसान उन्हें

0: 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 रुपए की निश्चित मासिक पेंशन दी जाती है। किसानों को बुढ़ापे में सुरक्षा कवच प्रदान करने वाली इस ऐतिहासिक योजना ने पिछले साल अपने कार्यान्वयन के 5 साल पूरे कर लिए हैं और इसके तहत छोटे और सीमांत किसान पेंशन फंड में मासिक सदस्यता का भुगतान करके नामांकन कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष की आयु के किसानों को जब तक वे 60 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक 55 से 200 रुपए प्रति माह के बीच योगदान करना होता है और एक बार जब वो 60 वर्ष की आयु तक पहुंच जाते हैं तो नामांकित किसानों को 3000 रुपए की मासिक पेंशन मिलती है, बशर्ते वो योजना के बहिष्करण मानदंडों को पूरा करते हों। जीवन बीमा निगम पेंशन फंड का प्रबंधन करता है और लाभार्थी पंजीकरण की सुविधा सामान्य सेवा केंद्रों यानी CSC और राज्य सरकारों के माध्यम से की जाती है। इस योजना के प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर न्यूनतम 3000 रुपए प्रति माह की पेंशन की गारंटी है। यदि किसी ग्राहक की पेंशन प्राप्त करते समय मृत्यु हो जाती है तो उनका जीवन साथी ग्राहक को प्राप्त होने वाली राशि के 50% के बराबर यानी पारिवारिक पेंशन के रूप में 1500 रुपए प्रति माह पारिवारिक पेंशन का हकदार होगा। यह केवल तभी लागू होता है जब पति या पत्नी पहले से ही योजना का लाभार्थी नहीं है। पारिवारिक पेंशन लाभ विशेष रूप से जीवन साथी के लिए है। कार्यान्वयन के 6 वर्षों में PMKMY ने पूरे भारत में छोटे और सीमांत किसानों को महत्वपूर्ण रूप से सशक्त बनाया है। प्यारे श्रोताओं, आज हमने परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत जाना प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में।
1: 100.1 FM Gold Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
2: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम, आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर।

अरे इस बात पर तो कोई भी दो राय नहीं हो सकती कि चांद जो है वो हम सबका सबसे फेवरेट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, जिसकी तरफ हम घंटों बैठकर बस देखते ही जाए तभी मन जो है वो हमारा बोर नहीं होगा। माँ है वो लोरी सुना के बच्चे को सुलाती है चांद की तरफ देखते हुए, और जो प्रेमी है वो अपनी प्रेमिका की तारीफ जब करता है तो चांद से उसको कंपेयर करता है। तो चांद हमारी जिंदगी का बड़ा ही इंटेग्रल सा हिस्सा है और इस पर न जाने कितने कितने हिंदी गीत बन चुके हैं। इस पर एक दिन प्रोग्राम जरूर हम बनाएंगे, मेरा तो मन है, तो एक दिन मैं कोशिश करूंगी कि ऐसे ही केवल ऐसे ही गाने आपको सुनवाऊं जो चांद से जुड़े हों। लेकिन चांद तो जैसे कि फेवरेट है हमारा और बहुत पॉपुलर है, लेकिन एक ऐसा ग्रह जो अब ग्रह नहीं है उसकी बात मैं करना चाहूंगी, क्योंकि आज के इस दिन के साथ उसका बड़ा ही गहरा नाता है। आज के दिन उसका डिमोशन किया गया था। मैं बात कर रही हूँ प्लूटो की। आज प्लूटो डिमोटेड डे मनाया जाता है दुनिया में, और 2006 को 24 अगस्त 2006 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्राग में अपनी महासभा के दौरान एक प्लैनेट होने की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो तय की थी। और इस नई परिभाषा के तहत किसी आकाशीय पिंड को पूर्ण ग्रह मानने के लिए उन्होंने तीन शर्तें रखी। एक तो वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता हो, दूसरा ये कि उसमें इतना मास हो कि वो गुरुत्वाकर्षण के कारण लगभग गोल आकार ले सके, और तीसरा ये कि उसने अपनी कक्षा यानी ऑर्बिट के आसपास का जो रास्ता है वो साफ कर लिया हो, यानी उसके रास्ते में कोई और दूसरा बड़ा पिंड ना आता हो। अब प्लूटो जो है वो तीसरी शर्त को पूरा नहीं कर सका। प्लूटो का मास उसकी जो ऑर्बिट है उसमें मौजूदा अन्य पिंडों के कंबाइंड मास की तुलना में बहुत कम है, इसलिए वो अपने रास्ते को साफ नहीं रख पाता, ठीक से झाड़ू नहीं लग पाती उससे। इसी वजह से उसे पूर्ण ग्रह की श्रेणी से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दिया गया है, यानी बौने ग्रह हो तुम। तो हुआ ये कि हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 हो गई। प्लूटो का मन इससे बहुत बहुत उदास हुआ, हम भी उदास हुए कि बचपन से हमने जाने कि भाई हमारे सौर मंडल में 9 प्लैनेट्स हैं, प्लूटो निकल गए। प्लूटो जब निकले या प्लैनेट नहीं कहलाते तो इसका मतलब ये नहीं है कि एस्ट्रोनॉमर्स के मन में जिज्ञासा नहीं है प्लूटो के लिए, बिल्कुल है और आगे भी जरूर रहेगी। तो प्लूटो डिमोटेड डे के लिए हमने चांद से जुड़ा एक गीत यहाँ सुना। चांद का टुकड़ा रहता है सामने वाली खिड़की में, लेकिन प्लूटो बहुत दूर रहता है फिलहाल, तो उसके लिए कोई भी गाना आज तक लिखा नहीं गया है। आप कोशिश कीजिए, मैं फिलहाल आपको दूसरा एक गाना सुनवाती हूँ जहाँ पर प्लूटो की बात नहीं है, लेकिन किसी से होने वाली मुलाकात की बात जरूर है आप सबके लिए। किशोर कुमार, चांद से ही मुलाकात हो जाएगी आज रात में, जब बादल साफ होंगे तो आपको दिखेगा चांद। चलिए ना सुनते हैं ये वाला गाना।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: बड़ा ही अद्भुत संयोग है आज। आज है 24 अगस्त और आज के दिन भारत को गुलामी से मुक्त करवाने के लिए कई क्रांतिकारियों ने, जिन्होंने अपना जीवन हमारे देश के लिए कुर्बान किया, उनमें से दो का जन्म हुआ था और इनके बलिदान के कारण से ही हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ। और ये अनगिनत ऐसे नाम हैं, ऐसे लोग हैं, लेकिन ये मैंने कहा ना कि संयोग है बड़ा ही खूबसूरत सा कि एक ही दिन में ऐसी दो बेहतरीन व्यक्तित्व जिनसे हम हमेशा प्रेरणा लेते हैं, उनके साहस से, उनके अदम्य इच्छा शक्ति से हम प्रेरणा लेते हैं, ऐसे दो लोग आज ही के दिन जन्मे। जानना चाहेंगे आप उनके बारे में? सबसे पहले तो बात करूंगी शिवराम राजगुरु की। महाराष्ट्र के रहने वाले थे राजगुरु, और तीन नाम हम एक ही सांस में लेते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तो वो वाले राजगुरु शिवराम राजगुरु का जन्म हुआ था आज ही के दिन 1908 में पुणे में, और केवल 6 साल की उम्र में ही उनके पिता जो हैं वो चल बसे, और पिता के निधन के बाद वो पढ़ाई लिखाई करने बनारस गए, और वहाँ बनारस में जब वो पढ़ रहे थे, संस्कृत सीख रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात देश के कुछ क्रांतिकारियों से हुई और उनके अंदर उतनी छोटी उम्र से ही जंग आज़ादी में शामिल होने की जो इच्छा है वो जाग उठी, और इनसे मिलने के बाद वो भी इस संघर्ष में लग गए, जुट गए, और 1924 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को उन्होंने ज्वाइन किया। और इस एसोसिएशन के बारे में अगर आप नहीं जानते तो बताना चाहूँगी कि एक क्रांतिकारी संगठन था, नाम से ही पता चलता है, और जुड़े थे इस संगठन के साथ बड़े बड़े नाम, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव और कई बड़े क्रांतिकारी साथ में मिलकर इसके साथ जुड़े थे। और लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हुई तो राजगुरु, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर इस हत्या का बदला लेने का संकल्प लिया, और उन्होंने स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, जेम्स ए स्कॉट। और स्कॉट को पहचानते नहीं थे, उनको कभी सामने रूबरू देखा नहीं, तो इस प्लान को अंजाम देने के लिए 17 दिसंबर 1928 का दिन उन्होंने चुना, और 17 दिसंबर के दिन राजगुरु और भगत सिंह लाहौर के जिला पुलिस मुख्यालय के बाहर स्कॉट का इंतजार करने लगे। और इसी बीच जयगोपाल ने एक पुलिस अफसर की तरफ इशारा करते हुए बताया कि यही स्कॉट हैं, और इशारा मिलते ही इन्होंने गोलियां चलाकर उस व्यक्ति की हत्या कर दी। लेकिन जिसको उन्होंने मारा वो असल में स्कॉट नहीं थे और सॉन्डर्स थे। सॉन्डर्स की हत्या में दोषी पाते हुए राजगुरु को साल 1931 यानी 1931 में फांसी दी गई, और उनके साथ सुखदेव और भगत सिंह को भी यही सजा सुनाई गई थी। तो ये जो दिन है ये हम सब के पटल पर अंकित है, 23 मार्च हम सब जानते हैं, उस दिन हमने अपने देश के तीन महान क्रांतिकारियों को खो दिया था। और जिस समय राजगुरु को अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया उनकी उम्र केवल 22 वर्ष की थी। आज भी उनके जज्बे और वीरता को हम याद करते हैं। और एक और ऐसा नाम है जो आज ही के दिन अपना जन्मदिन मना रहा है, उनके बारे में भी मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले लीजिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा रोंगटे खड़े कर देने वाला गाना सोनू निगम हरिहरन की आवाज़ में।

और जैसे कि मैंने कहा, आज ये कैसा संयोग है कि क्रांतिकारी बीना दास की भी आज ही जयंती है। 21 साल की लड़की थी बीना दास और बंगाल के कृष्णनगर में 24 अगस्त 1911 को प्रसिद्ध ब्रह्म समाजी शिक्षक बेनी माधव दास और समाज सेविका सरला देवी के घर आपका जन्म हुआ था। बचपन से ही जिस माहौल में आप पली बढ़ी, क्रांतिकारी स्वभाव की थीं और उनकी जो बड़ी बहन थी कल्याणी दास, वो भी स्वतंत्रता सेनानी ही थी। और स्कूल के दिनों से ही दोनों बहनों ने अंग्रेजों के खिलाफ होने वाली रैलियों और मोर्चों में भाग लेना शुरू कर दिया था। और 1928 में अपने स्कूल की शिक्षा के बाद छात्री संघ यानी महिला छात्र संघ में वो शामिल हो गए और यह संघ ब्राह्मो गर्ल्स स्कूल, विक्टोरिया स्कूल, बेथुन कॉलेज, डायसेशन कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं का समूह था। और बंगाल में संचालित इस समूह में 100 सदस्य थे जो भविष्य के लिए क्रांतिकारियों को इसमें भर्ती करते और साथ ही ट्रेनिंग भी देते थे। और बेथुन कॉलेज में जब पढ़ रही थी बीना, तो 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय

उन्होंने अपनी कक्षा की कुछ अन्य छात्राओं के साथ अपने कॉलेज के फाटक पर धरना दिया था और उस दौरान वो स्वयं सेवक के रूप में कांग्रेस अधिवेशन में भी सम्मिलित हुई और उसके बाद युगांतर दल के क्रांतिकारियों के संपर्क में आई। और उन दिनों क्रांतिकारियों का एक काम था बड़े अंग्रेज अधिकारियों को गोली का निशाना बनाकर ये दिखाना कि भारतीय उनसे कितनी नफरत करते हैं। और यही वो घटना है बीना दास के आने वाले जीवन की जिन्होंने उनको इतना बड़ा नाम दिया। 6 फरवरी 1932 को बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन को कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को दीक्षांत समारोह में डिग्रियां देनी थी और बीना दास को बीए की परीक्षा पूरी करके दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री लेनी थी। और उन्होंने अपने साथियों से परामर्श करके ये तय किया कि डिग्री लेते समय वो दीक्षांत भाषण देने वाले बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन को अपनी गोली का निशाना बनाएंगी। और जैसे ही जैक्सन ने समारोह में अपना भाषण देना शुरू किया, बीना ने भरी सभा में उठकर गवर्नर पर गोली चला दी और हुआ ये कि बीना का निशाना चूक गया और गोली जो है वो जैक्सन के कान के पास से होकर गुजरी और गोली की आवाज से सभा में अफरा तफरी मच गई। और इतने में लेफ्टिनेंट कर्नल सोहरावर्दी ने दौड़कर बीना का जो गला है वो एक हाथ से दबा दिया और दूसरे हाथ से पिस्तौल वाली कलाई पकड़कर हॉल की छत की तरफ कर दी। और उसके बावजूद बीना एक के बाद एक गोलियां चलाती रही। उन्होंने कुल 5 गोलियां चलाई थी उस दिन और तुरंत उनको ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद बीना दास सभी अखबारों की सुर्खियां बन गई, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 9 साल के कठोर कारावास की सजा हुई। मुकदमे के दौरान उन पर काफी प्रेशर था और उन्होंने एक बार भी अपने साथियों का नाम नहीं बताया, बस अडिग रही अपने उसूलों पर, अपनी देशभक्ति पर। प्रणाम है इस हौसले को, इस हिम्मत को, इन्हीं लोगों के बलिदान और संघर्ष के फलस्वरूप आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। और देखते देखते इन वीर सपूतों और कन्याओं को याद करते हुए हमारा ये जो पहला भाग था चाय और क्लासिक्स का, ये यहीं पर हम समेटेंगे। चलते चलते आप सबके लिए किशोर कुमार की आवाज में एक खूबसूरत सा गीत सुनते रहें, साथ रहें। हम जा रहे हैं छोटे से न्यूज ब्रेक की तरफ।

0: सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
2: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं दी और उनका व्यक्तिगत संदेश सौंपा। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मदुरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से तक पहुंच बना लेगा। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूह तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। श्री गोयल ने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नई राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2,60,00,000 रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। मेघालय की सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के पूर्व सांसद W.R. खारलुखी ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर खारलुखी वर्ष 2020 से 2026 तक राज्यसभा सांसद रहे। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 172 अंक गिरकर 77,369 पर बंद हुआ। निफ्टी 33 अंक कम होकर 24,219 पर पहुंच गया। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित कर दी है। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। ध्रुव जुरेल ने नाबाद 115 रन की पारी खेली। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। हॉकी विश्व कप में कुछ देर बाद भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इस मुकाबले को बड़े अंतर से जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: his second consecutive test century yesterday. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
2: नमस्कार, आकाशवाणी के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार। आज के कार्यक्रम का विषय है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, स्वस्थ पशुधन समृद्ध किसान। भारत में पशुधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था और करोड़ों किसानों की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार है। ऐसे में पशुओं को संक्रामक बीमारियों से सुरक्षित रखना केवल पशु स्वास्थ्य का विषय नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध किसान की आय, दुग्ध उत्पादन, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2019 में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम यानी NADCP की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश भर में टीकाकरण और वैज्ञानिक निगरानी के जरिए खुरपका और मुंहपका रोग यानी FMD तथा ब्रुसेलोसिस को नियंत्रित करना और इनके उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ना है। NADCP के तहत अब तक 147 करोड़ 16 लाख FMD वैक्सीन खुराक दी जा चुकी है, जिससे 8 करोड़ 4 लाख किसानों को लाभ मिला है। वहीं वर्ष 2019 में FMD के 132 मामले सामने आए थे, जो वर्ष 2025 में घटकर 40 रह गए। ब्रुसेलोसिस के मामले भी 2019 के 22 से घटकर 2025 में 15 रह गए हैं। तो सवाल ये है, भारत में पशु रोग नियंत्रण के इस बड़े अभियान को किस तरह लागू किया जा रहा है, इसका किसानों और पशुधन की उत्पादकता पर क्या असर पड़ा है और बदलते समय में तकनीक, डिजिटल निगरानी और वन हेल्थ जैसी अवधारणाएं इसमें क्या भूमिका निभा रही है, इसी को समझने की कोशिश करेंगे आज के विश्लेषण में। आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली रिपोर्ट से।
3: रोग मुक्त पशुधन की दिशा में राष्ट्रीय अभियान। भारत में पशुधन लंबे समय से ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। 2019 की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार देश में मवेशियों की कुल संख्या 535.78 करोड़ थी, जिनमें 302.79 करोड़ गौवंशी मवेशी शामिल थे। इतनी बड़ी पशुधन आबादी के लिए बीमारी की रोकथाम और समय पर इसका इलाज बेहद जरूरी है। खुरपका और मुंहपका रोग यानी FMD एक अत्यंत संक्रामक वायरल बीमारी है। यह गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर जैसे विभाजित खुर वाले पशुओं को प्रभावित करती है। इस बीमारी से पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता, विकास, प्रजनन और काम करने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए FMD का प्रभाव केवल पशु तक सीमित नहीं रहता, बल्कि किसान की आय पर भी पड़ता है। दूसरी प्रमुख बीमारी है ब्रुसेलोसिस, या गाय और भैंसों में होने वाला प्रजनन संबंधी रोग है। इससे पशुओं के सामान्य प्रजनन कार्य प्रभावित होते हैं और दूध तथा मांस उत्पादन पर भी इसका असर पड़ सकता है। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए सितंबर 2019 में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत FMD से बचाव के लिए योग्य पशुओं का हर 6 महीने में टीकाकरण किया जाता है। वहीं 4 से 8 महीने की बच्चियों को ब्रुसेलोसिस से बचाव के लिए उनके जीवन काल में एक बार टीका लगाया जाता है। कार्यक्रम केवल टीकाकरण तक सीमित नहीं है, इसमें पशुओं के कान टैगिंग, पंजीकरण, डिजिटल रिकॉर्ड, सिरो निगरानी, बीमारी की पहचान, नमूना परीक्षण और टीकों के लिए कोल्ड चेन जैसी व्यवस्थाएं भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य है कि बीमारी की पहचान समय पर हो, टीकाकरण का प्रभाव पता चलता रहे और जरूरत के अनुसार आगे की रणनीति तैयार की जा सके। NADCP के तहत अब तक FMD के 147.16 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। इसका लाभ 8.04 करोड़ किसानों को मिला है। टीकाकरण के बाद की निगरानी से भी सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। वर्ष 2025 में टीकाकरण के बाद की निगरानी में गायों की बच्चियों में 75.63% और भैंस की बच्चियों में 67.17% सेरो कन्वर्जन दर दर्ज की गई है। यानी टीकाकरण के बाद बड़ी संख्या में पशुओं में बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हुई है। पशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कदम है दूर दराज के क्षेत्रों तक चिकित्सा सेवाओं की पहुँच। 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 4019 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ संचालित हैं। ये टोल फ्री नंबर 1

0: 9-6-2 के माध्यम से किसानों के घर तक पशु चिकित्सा सेवाएं पहुंचाती हैं।
1: पशु रोगों पर नियंत्रण के लिए ये जरूरी है कि सरकार के पास पशुओं की संख्या, टीकाकरण और बीमारी से जुड़ा सही और समय पर उपलब्ध डेटा हो। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए पशुधन से जुड़े रिकॉर्ड को डिजिटल बनाया जा रहा है। इसके साथ ही अनुसंधान, वैक्सीन की गुणवत्ता, निगरानी और किसानों की सेवाओं की पहुँच को भी मजबूत किया जा रहा है। आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी रिपोर्ट।
2: आज के समय में किसी भी बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता के लिए सही डेटा और वैज्ञानिक निगरानी बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में भी डिजिटल तकनीक और वैज्ञानिक निगरानी को प्रमुख स्थान दिया गया है। इस दिशा में भारत पशुधन पोर्टल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस पोर्टल पर पशुओं का पंजीकरण किया जाता है और प्रत्येक पशु को 12 अंकों की विशिष्ट टैग आईडी दी जाती है। जुलाई 2026 तक इस पोर्टल पर 39 करोड़ से अधिक पशु पंजीकृत किए जा चुके थे। इससे पशुओं की पहचान, टीकाकरण और बीमारी से जुड़ी जानकारी को एक जगह दर्ज करने में मदद मिल रही है। डिजिटल रिकॉर्ड का फायदा यह है कि किसी बीमारी के फैलने की स्थिति में प्रभावित पशुओं और क्षेत्रों की पहचान करना बेहद आसान हो जाता है। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण, रियल टाइम डैशबोर्ड और टीकाकरण की ट्रेसिबिलिटी जैसी व्यवस्थाएं इस निगरानी को और मजबूत कर सकती हैं। टीकों की उपलब्धता और उनकी गुणवत्ता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। इन प्रयासों का संबंध केवल बीमारी को कम करने से नहीं है। सरकार का उद्देश्य वर्ष 2030 तक प्रति पशु प्रति वर्ष औसतन 3000 किलोग्राम दूध उत्पादन हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ना है। इससे स्पष्ट है कि पशु स्वास्थ्य को अब केवल बीमारी की रोकथाम के नजरिए से नहीं बल्कि पशुधन की उत्पादकता और किसान की आर्थिक स्थिति से भी जोड़कर देखा जा रहा है।
1: वन हेल्थ का मतलब है मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानना। अगर किसी पशु बीमारी की समय पर पहचान हो जाए और उसे नियंत्रित कर लिया जाए तो इससे इंसानों में संक्रमण का जोखिम भी कम किया जा सकता है। महामारी के अनुभवों ने हमें ये भी दिखाया है कि भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए पहले से तैयारी जरूरी है। इसी पहलू को समझते हैं हमारी तीसरी और अंतिम रिपोर्ट में।
3: आज दुनिया के सामने संक्रामक और जूनोटिक बीमारियों का खतरा एक महत्वपूर्ण चुनौती है। जूनोटिक बीमारियां वे होती हैं जो पशुओं से मनुष्यों में फैल सकती हैं। इसलिए पशुओं में बीमारी की जल्द पहचान, प्रभावी निगरानी और समय पर नियंत्रण मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम इसी व्यापक सोच को मजबूत करता है। वन हेल्थ दृष्टिकोण मानव, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य की आपसी निर्भरता को स्वीकार करता है। भारत में राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन को 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद की बैठक में मंजूरी दी गई थी। इस मिशन का उद्देश्य देश में वन हेल्थ से जुड़ी गतिविधियों को समन्वित और एकीकृत करना है। सरकार ने पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए मानक पशु चिकित्सा उपचार दिशा निर्देश भी तैयार किए हैं। इनका उद्देश्य वैज्ञानिक पशु चिकित्सा पद्धतियों, दवाओं के तर्कसंगत इस्तेमाल और एंटी माइक्रोबियल प्रबंधन को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही पशु रोगों के लिए संकट प्रबंधन योजना तैयार की गई है ताकि बीमारी के प्रकोप की स्थिति में तेजी से कार्रवाई की जा सके। वित्तीय वर्ष 2026-27 में पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए कुल 2010 करोड़ रुपए का बजट परिव्यय रखा गया है। इसमें रोग नियंत्रण, पशु चिकित्सा सेवाओं और पशु स्वास्थ्य देखभाल को एकीकृत तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह NADCP ने भारत में पशु स्वास्थ्य को एक व्यापक और डेटा आधारित व्यवस्था से जोड़ने की नींव रखी है।
1: भारत के लिए पशुधन केवल कृषि से जुड़ी संपत्ति नहीं है, ये करोड़ों किसानों की आय, ग्रामीण रोजगार और देश की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत अब तक 147 करोड़ 16 लाख FMD वैक्सीन खुराक दी जा चुकी है और इससे 8 करोड़ 4 लाख किसानों को लाभ मिला है। विकसित भारत 2047 की दिशा में आगे बढ़ते हुए पशु स्वास्थ्य में निरंतर निवेश किसानों की समृद्धि के साथ साथ भविष्य की महामारियों से निपटने की राष्ट्रीय क्षमता को भी मजबूत कर सकता है। इसी उम्मीद के साथ आज के विश्लेषण कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारी सहयोगी श्रेया पाठक ने और तकनीक की सहयोग दिया है अरुणदीप सिंह ने। नमस्कार।

0: क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स, 100.1 एफएम गोल्ड पर, एफएम गोल्ड पर।
1: चाय और क्लासिक्स के दूसरे एकदम छोटी मोटी से भाग में आपका स्वागत है। बस 10 मिनट हम साथ रहेंगे, लेकिन एकदम भरपूर भरपूर भरपूर तरीके से इस मिनट 10 वाले मिनट को एंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले एक मीठा सा गाना आपको सुनवाऊं। कुछ गानों की तो गुंजाइश है ही, लेकिन एक बात आपको, बस एक छोटी सी टिप या फिर समझ लीजिए कि वेलबींग का हैक्स शेयर करना चाहूँगी। क्या हैक है? आजकल ये जो ज़िंदगी हमारी इतनी ज़्यादा दौड़ भाग वाली ज़िंदगी है, तो हमको स्ट्रेस हो जाता है, शारीरिक और मानसिक थकान जो है बहुत आम बात है। मुझे भी होता है, आपको भी होता है। तो जब शरीर को डीप रेस्ट और स्लो रिकवरी की ज़रूरत होती है, तो हमारे आसपास के जो रंग है ना, इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। सच्ची रिसर्च हुआ है इस पर और शोध बताते हैं कि रंगों का हमारे नर्वस सिस्टम पर सीधा असर पड़ता है। तो यदि आप लंबे समय की बीमारी, जिम की भारी थकान या फिर मेंटल स्ट्रेस से धीरे धीरे उबरना चाहते हैं, तो अपने आसपास आप डीप इंडिगो और सेज ग्रीन, इन दोनों शेड्स को जगह दें। ये आपके शरीर को बिना किसी दबाव के प्राकृतिक तरीके से खुद को रिचार्ज करने में मदद करते हैं। है ना गजब का हैक? तो फिर अगर हैं ये रंग आपके घर में तो माशाल्लाह, और अगर नहीं है तो ट्राई कीजिए। कोई एक दीवार चुनिए और उस पर ये जो रंग हैं, सेज ग्रीन और डीप इंडिगो, इनको जरा पेंट करवाइए ना, देखिए ना क्या होता है फिर।

और अब चलने का वक्त बस नजदीक आ रहा है, मुझे जाना है अब। लेकिन जाने से पहले आपको कुछ एक लोकल इवेंट्स के बारे में बताती चलूं। तो इस बुधवार 26 अगस्त को बाईपास के निकट स्थित एक आर्ट सेंटर में मशहूर कलाकार श्रीकांत आचार्य के साथ एक अड्डा सेशन का आयोजन किया जा रहा है शाम 6:30 पर। वही 29 अगस्त को रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर के विवेकानंद हॉल में शाम 4 बजे से शास्त्रीय संगीत संध्या का

आयोजन किया जाएगा। और सॉल्ट लेक सेक्टर 1 स्थित एक कैफे में रोजाना मल्टीपल स्लॉट्स में फ्रिज मैग्नेट पेंटिंग वर्कशॉप चल रही है। इनमें से किसी भी इवेंट में डू ज्वाइन इन अगर आपका दिल कहता है। और फिलहाल मेरा दिल ये कहता है कि आपकी और मेरी ये जो दोस्ती है ये तो पक्की वाली दोस्ती है, इसमें प्यार भी है। तो ऐसे ही एक गाना चलिए हम सुनते हैं, चलते चलते कार्यक्रम आज बस खत्म होगा और यहाँ पर दोस्ती जो है वो प्यार में तब्दील हो रही है आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज़ के साथ। इस गीत को सुनते सुनते चाय और क्लासिक्स के इस अड्डा से चैनिका को आप दे दें इजाजत। सुनते रहें FM गोल्ड कोलकाता।

0: This is Akashwani. Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we'll be taking your calls on your market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these numbers, the Delhi STD code if you're calling from out of Delhi. My name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. आज सोमवार है और हम आपके प्रश्नों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे. इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप हमें नंबर्स पर फोन कर सकते हैं 2331-4444. दूसरा नंबर है 2331-0481 और तीसरा नंबर है 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. और श्रोताओं, आपके प्रश्नों के उत्तर देने और हमारे साथ चर्चा के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा. शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार, धन्यवाद.
1: और सबसे पहले नजर आर्थिक सुर्खियों पर.
0: The benchmark domestic indices fall, Sensex slips nearly 200 points, Nifty settles at 24,219. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says India is negotiating free trade agreements with 8 to 9 additional groups of countries and global crude oil prices decline.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट आई. सेंसेक्स में लगभग 200 अंक की सुस्ती देखी गई, जबकि निफ्टी 24,219 अंक पर बंद हुआ. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत 8 से 9 अतिरिक्त देशों के समूह के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए प्रयास कर रहा है और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई.

0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और बढ़ते हैं खबरों की तरफ. घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 0.22% यानी 172 अंक नीचे आकर 77,369 पर बंद हुआ. निफ्टी 0.14% यानी 33 अंक की सुस्ती के साथ 24,219 पर पहुंच गया. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तारित बाजार में मिला जुला रुख देखने को मिला. मिड कैप सूचकांक में 0.1% की बढ़त दर्ज हुई जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.3% की गिरावट आई. इससे पहले बाजार आज मामूली बढ़त के साथ खुले थे लेकिन शुरुआती बढ़त को बरकरार नहीं रख सके. दोपहर के सत्र के दौरान बिकवाली का दबाव बढ़ने से दोनों सूचकांक नकारात्मक दायरे में चले गए और दिन भर बाजार दबाव में बने रहे.
0: The benchmark domestic equity indices ended in a negative zone today. The Sensex declined 172 points or 0.22% to close at 77,369. The Nifty dropped 33 points or 0.14% to settle at 24,219. Meanwhile, the broader market at the National Stock Exchange showed mixed trend. The Mid-Cap 100 index added 0.1%, while the Small-Cap 100 index dipped 0.3%. Earlier, markets opened marginally up but failed to sustain their early gains. Both benchmark indices slipped into negative territory around the afternoon session as selling pressure intensified. The markets remained under pressure for the rest of the day.
1: सेंसेक्स सूचकांक की 30 में से 20 कंपनियों के शेयरों में आज गिरावट दर्ज हुई. सबसे अधिक नुकसान वाले शेयरों में अडानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 1.3% की गिरावट देखी गई. वहीं बजाज फिनसर्व में 1.2% और ट्रेंड में 0.9% की सुस्ती आई. इसके विपरीत टाटा स्टील में 1.9%, HCL टेक में 1.3% और इंफोसिस में 0.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई.
0: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 17 out of 28 sectors registered losses. Among the top underperformers, insurance decreased 0.9%, PSU banks as well as housing finance shed 0.8%, and consumer durables fell 0.4%. In contrast, metal advanced 1%.

0: 2.4%, telecommunications rose 1%, and commodities added 0.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,467 companies declined, 1,973 advanced, and 248 remained unchanged.
1: अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 3 पैसे की गिरावट के साथ 95.74 रुपए पर बंद हुआ। शिशिर, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कारोबार का इस सप्ताह का पहला दिन रहा और गिरावट के साथ इसकी हमने देखी, जो बंद जब बाजार बंद हुआ गिरावट के साथ बंद हुआ, और पिछला सप्ताह भी जो था मिला जुला कारोबार हमने देखा था, उसमें क्या कहेंगे इस पर आप?
2: देखिए, बाजार को एक कहते ना स्पष्ट दिशा की जरूरत है, और स्पष्ट दिशा मिल नहीं पा रहा है क्योंकि आज अचानक पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है। अब अभी हम लोग बात करें हॉर्मुज की, बात करें, अब वहां पर कहा गया है कि जो भी जहाज गुजरेंगे उनको एक शुल्क अदा करनी है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो कहा है कि वो जो है वो सैंक्शन प्रतिबंध की बात कर रहे हैं, तो इससे क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जो है वो बाजार के अनुकूल नहीं है, जिसका असर आप देख रहे हैं कि बाजार आज, आप देखिए, आपने जैसा शुरू में कहा कि बाजार की शुरुआत अच्छी हुई थी, जिसको हम लोग तकनीकी भाषा में कहते हैं कि गैप अप ओपनिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद उसको वो बनाए नहीं रख सका क्योंकि परिस्थितियां और जो कहते ना कि संकेत जो थे वो बहुत पक्ष में नहीं थे। इन्हीं सब का नतीजा ये रहा कि आज बाजार में हमें जो है गिरावट, हालांकि गिरावट कोई बहुत बड़ी नहीं, मामूली गिरावट है। एक महत्वपूर्ण जो आज तथ्य मुझे लगा कि है वो है आपका तकनीकी जो आईटी कंपनियों के शेयर हैं, उनमें हमने आज तेजी देखी। जो पिछले कुछ समय से लगातार ऐसा माहौल बन रहा है कि आईटी कंपनियां जो हैं वो पिछड़ रही हैं, एआई के मामले में हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम काफ़ी पीछे चले जाएंगे, लेकिन अगर हमारी आईटी सेक्टर में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी आती, थोड़ी सी भी बेहतरी स्थिति देखने को मिलती है तो उसका हमें फ़ायदा देखने को मिलेगा। और जहां तक सवाल है वित्तीय सेवाओं की बात हम लोग करें, चाहे सरकारी बैंकों की बात करें या निजी बैंकों की बात करें, NBFCs की बात करें, वहां पर जो हमने गिरावट देखी है, अब वहां पर एक ये भी चिंता जो है वो सताने लगी कि हमारा इंटरेस्ट मार्जिन पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अब आने वाले समय में ब्याज दर बढ़ने की तो बात है, लेकिन फिलहाल जो पहली और दूसरी तिमाही जो है वहां पर हमारे ब्याज के ऊपर दबाव बना हुआ है, तो इसकी वजह से फाइनेंशियल सेक्टर्स में भी हमने गिरावट देखी। लेकिन आज का जो पॉजिटिव मैं पॉइंट कहूंगा वो है आईटी कंपनियों में बढ़त,
1: मुनाफा वसूली भी इसके पीछे कोई रीजन?
2: देखिए, मुनाफा वसूली अलग अलग तरीके से लोग करते हैं, और अगर आप देखेंगे कि जो घरेलू वित्तीय संस्थाएं हैं जो पिछले कुछ समय से काफी निवेश कर रहे हैं, वो एक मौका जरूर तलाशते हैं क्योंकि उनको भी अपने, जिसको कहते ना कि अपने बैलेंस शीट को बेहतर करना है। और एक बड़ी बात ये भी आप ध्यान में रखिए कि जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं जो बीते कुछ समय से लगातार हमारे लिए सेलर बने थे, वो अब बायर की भी पोजीशन में है, तो ये दोनों चीज़ें हमारे लिए एक कह सकते हैं कि जब उनकी ज़्यादा मुनाफा वसूली होती है तो घरेलू संस्थागत निवेशक ज़्यादा निवेश करते हैं, घरेलू संस्थागत निवेशक जब मुनाफा वसूली करते हैं तो विदेशी संस्थागत निवेशकों की हमारी खरीदारी देखने को मिलती है। बाजार इस समय एक दिशा की तलाश कर रहा है, एक ऐसे संकेत की तलाश कर रहा है जो आगे बढ़ने में उसे मदद कर सके।
0: निफ्टी 24,000, शशिर जी, व्हेन डू वी रिमेंबर दिस हैपनिंग फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड, द निफ्टी काइंड ऑफ सेलिंग इन दैट वेरी नैरो जोन?
2: ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी आफ्टर से अ गुड गैप वी आर सीइंग दिस काइंड ऑफ नैरो रेंज और नैरो बाउंड ट्रेडिंग, बट आई फील दैट करेंटली द मार्केट इज इन अ जोन वेयर देयर इज नो फिक्स्ड डायरेक्शन। Today you will have one kind of movement in one particular sector, like defense sector. We always say that defense is something where there will always be interest. Today we have found that there was selling in the defense sector. Pharmaceutical sectors, we saw some kind of selling. We saw financial services, irrespective of whether they belong to private sector or the public sector. So the real issue is that what kind of direction we are looking for. Are we looking for any positive indications? Are we looking for any good policy direction? Are we looking for some kind of indication on the capital gain tax, if we talk about the institutional investor point of view? So these are some of the issues which we are looking for, and the market is looking for some kind of clarity on that, those issues. Unless there are some clarity, the market will always be in the range bound. And please remember that the global uncertainties and the global situations are still, we do not know which direction it is going on.
0: The global uncertainties and so on and so forth, the factors which are affecting the market, the direction you talk of, you know, it's been ubiquitous kind of

0: एक एक लगाना आप ना भूलें। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भेंट की। दोनों नेताओं ने भारत रूस संबंधों को और सशक्त करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलनों की तैयारियों पर चर्चा की गई। डॉक्टर जयशंकर ने भारत रूस की मजबूत और बढ़ती साझेदारी, विशेष रूप से आर्थिक सहयोग, व्यापार तथा ऊर्जा के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि व्यापार, ऊर्जा और परमाणु सहयोग सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच संबंध काफी मजबूत हुए हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारत के साथ विभिन्न मुद्दों पर सहयोग करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। शशि जी, विदेश मंत्री का यह दौरा कितना महत्वपूर्ण है और क्या मायने हैं इन तमाम बातों के?
1: देखिए, प्रधानमंत्री और व्लादिमीर पुतिन की जो बैठक होनी है उसके लिए एक आधार तैयार किया जा रहा है इस बैठक के जरिए। इसके अलावा जो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही, जो आपने एक पैराग्राफ में पढ़ा कि उन्होंने ज़्यादा खाद की बात की, उर्वरक देने की बात की है। देखिए, जब से रूस और यूक्रेन वाली लड़ाई हुई उससे हमारे यूरिया की आपूर्ति के ऊपर और बाकी भी जो कंपोनेंट है उसकी आपूर्ति पर असर पड़ा, और उसका असर ये हो कि उसके दाम काफ़ी बढ़े। उसके दाम बढ़ने का नुकसान ये हुआ कि हमारा जो सब्सिडी पे खर्च है वो काफ़ी बढ़ा है, और कई बार ऐसी भी स्थिति आई कि जो 3,300 या 3,200 रुपये का जो पड़ रहा है उसे हम 250-300 रुपये या 350 रुपये में बेच रहे हैं, मतलब 10वें हिस्से में हम उसको बेच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए सब्सिडी का बोझ भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में रूस का ये कहना कि वो ज़्यादा उर्वरक की आपूर्ति के लिए तैयार है वो काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। कई क्षेत्रों में उन्होंने हमारे साथ रणनीतिक साझेदारी की है, और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री और उनकी मुलाकात के पहले का एक आधार तैयार हो रहा है। उम्मीद हम कर सकते हैं कि वहाँ पर कुछ नए समझौते देखने को मिलेंगे।
0: और इस बीच हमारे आज के पहले कॉलर हैं शंकर भोपाल से। आपका स्वागत है, सवाल पूछिए शंकर। सवाल पूछिए आपका।
2: मेरी आवाज आ रही?
0: जी बिल्कुल आ रही है, सवाल पूछिए।
2: मेरा सवाल सर, ये जो हमारे यहाँ चाइना से और मोस्टली चाइना से जो सामान आता है, फिनिश्ड गुड्स, कच्चा सामान नहीं, फिनिश्ड गुड्स, और उसको पे ड्यूटी क्यों नहीं बढ़ा दी जाती जिससे हमारे देश में सामान बने और हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, और इसी सिलसिले में अगर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट के इंपोर्ट में कुछ रियायत दे दी जाए या जीरो ड्यूटी कर दी जाए तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी अपने आप, क्योंकि अभी भी मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट पे भी इंडिया में ड्यूटी है, और कच्चे फिनिश गुड्स पे, तैयार सामान पे चाइना से ड्यूटी उतनी है जितनी समझ लीजिए दूसरे देशों से जो हमारे फ्रेंडली देश हैं उनसे। तो ऐसा क्यों, उन पर ड्यूटी बढ़ा दें तो अपने आप मैन्युफैक्चरिंग गुड्स कम हो जाएंगे चाइना से और यहाँ बनने की तैयारी हो जाएगी।
1: शंकर जी, आपका सुझाव तो अच्छा है, लेकिन इसके एक कुछ कहते हैं ना व्यावहारिक भी दिक्कतें हैं, क्योंकि आप किसी भी सामान पर जब शुल्क बढ़ाते हैं तो उसमें ये भी ध्यान में रखना होता है कि उस देश के साथ जो भी आपका व्यापार है वो कितना हद तक प्रभावित होता है। तो जो भी आप कहते हैं कि आप वहाँ से आयात कर रहे हैं उसको आप और महंगा कर दीजिए, ये भी ध्यान में रखिए कि हम चीन से बड़े पैमाने पर कच्चा सामान आयात कर रहे हैं, जैसे आपका API है या फिर चिप्स हैं या बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, कैपिटल गुड्स हैं। अब यदि उन सामानों पर यदि वो ड्यूटी बढ़ा देते हैं रेसिप्रोकल वे में तो फिर नुकसान आपको भी उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक व्यवहारिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए करना होगा, और ये आप ध्यान में रखिए कि हमारे व्यापार का जो पूरा कॉम्पोजिशन है वो किस तरीके का है।
0: आगे बढ़ते हैं। एशियाई बाजारों में आज दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 3.1% लुढ़क गया और जापान का निक्केई 225 आज 0.7% नीचे आ गया। यूरोपीय बाजारों में लंदन का फुटसी 100 0.2% की बढ़त पर था और जर्मनी का डेक्स 0.1% ऊपर चलकर कारोबार कर रहा था। दिल्ली से हमारे अगले श्रोता हैं जो फोन लाइन पर, सतपाल। सतपाल जी स्वागत है, सवाल पूछिए।
3: सर नमस्कार जी।
1: नमस्कार
3: सर, आजकल जो लड़ाई का माहौल चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, इसको ऐसे कंसीडर करते हुए तो क्या लग रहा है कि फ्यूचर में क्या निफ्टी वगैरह कुछ बढ़ेगा, या आपने जो लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप, इसके ऊपर बताइएगा कि कौन सा फैक्टर सही रहेगा।
1: सतपाल जी, देखिए दोनों देशों के बीच जिस तरीके के तनावपूर्ण स्थिति बने हुई है उसमें किसी भी तरीके की भविष्यवाणी करना उचित नहीं है, क्योंकि हर रोज एक नई परिस्थिति हमें देखने को मिलता है। जैसे मैं आज की बात करूं तो आज ईरान ने कहा कि वो जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य है वहां से जो भी जहाज जाएंगे उनसे वो पैसा लेंगे, तो ये एक अलग अलग तरीके की परिस्थिति है। अब प्रश्न यह है कि बाजार को लेकर के आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि बीते कुछ समय से हमने शेयर बाजार में थोड़ी एक बेहतरी देखी है। अब शेयर बाजार काफी हद तक लड़ाई की बातों को जो है वो हम ये नहीं कह रहे, पूरी तरह से उसने डिस्काउंट कर दिया, दरकिनार कर दिया, अभी भी कुछ चीजों को, और मेरी हमेशा से राय रही है कि इस तरह की परिस्थितियों में अगर आप बाजार में आना चाहते हैं तो छोटे छोटे किस्तों में आप लार्ज कैप में आप पैसा लगाएं, और वो भी जब बाजार में एक गिरावट का माहौल बना हो वहां पर आप खरीदें छोटे छोटे किस्तों में जब जब गिरावट आए। इससे आपको क्या होगा कि आपकी लागत में एवरेजिंग का मौका मिलेगा और आपके लिए कुल लागत जो है वो कम हो सकेगा। तो मेरा सुझाव ये है, लार्ज कैप है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप म्यूचुअल फंड में भी आप निवेश करें जो डाइवर्सिफाइड फंड हो और डेट और इक्विटी दोनों का हो, बैलेंस फंड जिसको हम लोग कह सकते हैं, वहां पर आपके लिए बेहतर विकल्प होगा।
4: नेक्स्ट कॉलर इज के शुक्ला फ्रॉम महाराष्ट्र। मिस्टर शुक्ला
5: जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगले साल महंगाई लगभग 7% था, इस बार दो तीन महीने में लगभग 10-12% बढ़ गया, क्या इसका फुल पूरा कारण ये जो पेट्रोलियम का प्रॉब्लम है दूसरे कंट्री से आता है उसका, या फिर और कोई कारण है?
1: शुक्ला साहब, थोड़ा सा मैं क्षमा के साथ आपके आंकड़े को थोड़ा सही करना चाहूँगा कि खुदरा महंगाई दर जो है, अगर जो ताज़ा आंकड़े जो कि जुलाई के हैं वो 4.5 के करीब में है, तो ये जो 10% की आपने बात कही है वो उचित नहीं है यहाँ पर उसको जिक्र करना। तो ये जो 4.5% है इसमें दो तीन चीज़ों की महंगाई दर ज़्यादा है। आप प्याज की बात कर लीजिए, चीनी की बात कर लीजिए, इसके अलावा हम सोने और चांदी की बात कर लें, और हमारे आपके घरों में जो लहसुन और अदरक का जो इस्तेमाल होता है इसकी महंगाई दर काफ़ी बढ़ गई है, तो हमारी थाली के बजट पर ज़रूर इसका असर पड़ा है। लेकिन कुल महंगाई दर यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं हेडलाइन जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4.5% के करीब में है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट में जो दाम बढ़े थे पेट्रोल और डीजल के, उसका असर जो है वो कुछ हद तक हमें ज़रूर देखने को मिला है, क्योंकि डीजल का जब हम कहते हैं कि डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उससे सामान की आवाजाही की लागत बढ़ती है और उससे महंगाई दर पर असर पड़ता है। लेकिन अभी भी जो 6% हमारे लिए महंगाई दर की सीमा होती है जो भारत सरकार और रिजर्व बैंक के बीच में जो एक समझौता है वहां पर हम नहीं पहुंचे, 4% से ज्यादा है, तो वहां पर जरूर हमें सोचने की जरूरत होती है।
4: नेक्स्ट कॉलर इज सदबुद्धि फ्रॉम चेन्नई, वेलकम।
6: या हेलो सर, गुड इवनिंग टीम, मार्केट मंत्रा टीम,
4: गुड इवनिंग।
6: दिस इज रिगार्डिंग दिस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, रिसेंटली वी हैव इंप्लीमेंटेड इन गुजरात, what time it will take the effect and when we are going to lead in the semiconductor chips preparation, sir?
1: Sir, I think by 27, by the next year, we will be in a position to export also after meeting the domestic requirement. And there are other plants also which are coming into existence. 2 or 3 have already started production. So I believe by 27 and by 28, we will be in a better position in terms of the semiconductor, what you can call it as a chips.
4: Moving on. Iran has said that vessels from authorized countries transiting the Strait of Hormuz will now be required to pay service fees to Tehran. Iran's National Security Commission spokesperson Ebrahim Rezai stated that the fees will cover a wide range of maritime, environmental and logistical provisions. According to Strait broadcaster, this comes after the approval of the Article 3 strategic action to ensure the security and progress of the Strait of Hormuz plan. On the other hand, United States Treasury Secretary Scott Bessent is set to unveil a new package of sanctions against Iran tonight. And in the oil sector, the global crude oil prices declined today. Brent crude was trading 1.6% down at $92.87 per barrel in the intraday trade. The West Texas Intermediate crude was trading 2.3% lower at $85.08 per barrel when reports last came in. Shishirji, Iran as well kind of throwing tantrums every day, today something, tomorrow something, day after something. Now this new fees coming into picture, will

0: We'll come to that, but in the meanwhile, we are joined in by our next caller, Sainath from Thane. Mr. Sainath.
1: Hello.
0: Yeah, Mr. Sainath.
1: My question is that the company jo dividend, DTA share dividend, wo 15H form senior citizen ko valid hai ki form number 121 kuch change ho gaya.
2: ये चेंज हो गया है क्योंकि आयकर कानून 2025 लागू हुआ है, पहली अप्रैल 2026 से, तो उसके तहत आपको जो फॉर्म है, देखिए फॉर्म वही है, बस फर्क ये है कि अब वो एक नई संख्या के साथ है। तो जो आपने 120 121 की बात की, ऐसा ही कुछ संख्या है जो आपको भरना होगा। और जो आपको डिविडेंड है, उस समय में आपके पास एक चिट्ठी भी आएगी कंपनी की तरफ से कि अगर आप उसके आपकी आय जो है वो कर की सीमा से कम है तो आप वो फॉर्म भर दीजिए, आपके डिविडेंड पर टैक्स नहीं।
0: Yeah, Shishir ji, continuing with our earlier discussions, now Iran kind of trying to levy new fees from any country of the vessels of any country which is transiting the Strait of Hormuz. Now, this is something which is of some concern, and also the state broadcaster says that approval of Article 3 strategic action is to ensure the security and progress of Strait of Hormuz plan. Now, this is something of some concern, and again we'll come to that. But we have been joined in by our new caller Kaushik from Kolkata. Kaushik.
3: सवाल और एक बार बोलिए
2: जी। सवाल पूछिए कौशिक जी।
3: हेलो।
2: हाँ कौशिक जी, सवाल पूछिए।
3: अच्छा सर, मेरा दो सवाल है
2: जी।
3: एक है जो इन्फ्लेशन 4.5 का जो परसेंटेज है, इसमें कौन से जो बारीकियां हैं इसमें देखी जाती है, क्योंकि एडुकेशन और जो आपका हेल्थ केयर सर्विसेज का इन्फ्लेशन है वो काफी ज्यादा है, एक तो ये। दूसरा सवाल ये है कि आज ब्रेंट क्रूड का प्राइस फॉल किया है, फिर भी निफ्टी फॉल किया है, तो इसमें क्या इंटरलिंकिंग है, ये समझ में नहीं आया आज।
2: कौशिक जी, पहला सवाल जो आपने महंगाई दर को लेकर के कहा है, देखिए इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका महंगाई दर को लेकर के है, वहाँ पर सोने और चांदी की कीमतों को लेकर के, उसके अलावा जो ताज़ा आंकड़े हैं उसमें प्याज की भी एक भूमिका रही है, जिसकी कीमतों में हमने बढ़त देखी, लगभग 22% वहाँ महंगाई दर है, जबकि चांदी की महंगाई दर 100% के ऊपर है। आपने जो जिक्र किया शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में, वहाँ पर महंगाई दर है लेकिन उस स्तर पे नहीं है जिसको लेकर के हम बहुत ज़्यादा तनाव या चिंता लें। दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा निफ्टी बनाम कच्चे तेल को लेकर के, इसका दोनों का कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, ये परिस्थितियां अलग थी जिसकी वजह से निफ्टी में आपने गिरावट देखी।
4: भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट वाला सोना आज 1% के उछाल के साथ 1,62,154 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं चांदी की बात की जाए तो चांदी 0.5% नीचे आकर 2,45,391 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। शिशिर जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी धन्यवाद।
0: थैंक यू शिशिर जी। एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन। Benchmark domestic indices fall, Sensex slips nearly 200 points, Nifty settles at 24,219. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says India is negotiating free trade agreements with 8 to 9 additional group of countries, and global crude oil prices decline. That's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
4: Namaskar.
5: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
2: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं दी और उनका व्यक्तिगत संदेश सौंपा। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से तक पहुंच बना लेगा। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। श्री गोयल ने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बिया गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई है। गृह मंत्रालय कार्यालय ने बताया कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नई राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रस्तुति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6 महीने का ये पाठ्यक्रम गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को उच्च स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करते हुए प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2,60,00,000 रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। मेघालय की सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के पूर्व सांसद W.R. खारलुखी ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर खारलुखी वर्ष 2020 से 2026 तक राज्यसभा सांसद रहे। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 172 अंक गिरकर 77,369 पर बंद हुआ। निफ्टी 33 अंक कम होकर 24,219 पर पहुंच गया। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin today. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation and upcoming high-level summits. Indian Ambassador to Russia Vinay Kumar and Joint Secretary ERS Mayank Singh also part of the delegation. During the meeting, Dr. S. Jaishankar highlighted the strong and growing India-Russia partnership, particularly in economic cooperation, trade and energy. He conveyed Prime Minister Narendra Modi's greetings and handed over Prime Minister Modi's personal message to Mr. Putin. Dr. Jaishankar described the outcome of the Intergovernmental Commission meeting as positive.
1: Our economic cooperation, trade, energy, fertilizers, nuclear, other dimensions as well. Overall, I think our economic cooperation has grown very significantly. Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. So we have a very strong picture of cooperation to present.
3: Early in the day, External Affairs Minister, along with Russian First Deputy Prime Minister Denis Manturov, co-chaired a meeting of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation in Moscow. Dr. Jaishankar reached Moscow yesterday on a two-day visit to Russia. National Security Advisor Ajit Doval arrived in Beijing on a two-day visit to China. He will take part in the 25th round of the special representative talks between the two countries on the boundary issue with his Chinese counterpart and foreign minister Wang Yi scheduled tomorrow. Announcing the special representative talks at a media briefing today, Chinese Foreign Ministry spokesman Li Yan said Mr. Doval and Mr. Wang will have an in-depth discussion on the boundary issue as well as other bilateral, regional and international relations. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said India will amend existing regulations and introduce new rules over the next 2 months to address concerns raised by companies seeking to set up manufacturing operations in the country. Speaking during a program in Tokyo, Mr. Goyal said the government was willing to address issues faced by investors where the demands were fair and justified. India stressed the need for diversified, adequate, predictable and sustained international financing to support land restoration and strengthen resilience to drought. Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav made the remarks while addressing the ministerial dialogue on innovative financial mechanisms for healthy land and drought resilience during the 17th session of the conference of the parties COP17 to the United Nations Convention to Combat Desertification UNCCD at Ulaanbaatar in Mongolia. Indian agencies have brought back three absconding gangsters linked to the Bambiha gang apprehended in Malaysia. In a social media post, Home Minister's office informed that the men named Jaspreet Singh, Ajay Singh and Pawandeep Singh have been brought back to India and sent into police custody. The accused are linked to multiple crimes including extortion, cross-border arms and narco trafficking and a foiled grenade attack in Ludhiana. Iran has warned that new U.S. sanctions expected to be announced tonight will not bring peace to the region and has threatened a strong response to any escalation. Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Baghai said Tehran will respond harshly to expanded U.S. sanctions, including measures targeting countries that cooperate with Washington. He warned that any further escalation would have consequences, saying Iran's hands were not tied. The India Meteorological Department IMD has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall at isolated places over Chhattisgarh, Bihar, Odisha, East Madhya Pradesh till tomorrow. Meanwhile, Delhi and its adjoining areas witnessed heavy rainfall, bringing relief from the hot and humid weather. Heavy downpour has also disrupted flight operations at Delhi Airport. According to Delhi Airport official, 14 flights have been diverted, including 2 international flights. In cricket, Sri Lanka were 8-2 at stumps on a rain-marred day, 2 of the second test in Colombo. Earlier, India declared the first innings at 503-9. For visitors, Dhruv Jurel produced a flawless display of risk-free batting to score an unbeaten 115. And that is the end of this news bulletin.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त और विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। उड़ीसा में लगातार बारिश से जल भराव और नदियों का जलस्तर बढ़ा। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में मेजबान श्रीलंका के साथ भारत ने ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड्डिकल के शतकों की बदौलत पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
2: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है।

0: मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
2: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतोरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई।
3: प्रोग्रेस ऑन मार्केट एक्सेस,
0: बाजार तक बेहतर पहुंच, शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को हटाना, भुगतान व्यवस्था को मजबूत करना और दोनों देशों के कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाना इस असंतुलन को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँचाने के साझा लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
3: इन बायलैटरल ट्रेड बाय 2030।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
4: We are a young country.
5: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
3: With a large domestic market.
2: श्री गोयल ने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं।
3: We have free trade agreements or preferential market access.
5: भारत को $70 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाले बाजारों में आसानी से कारोबार करने की सुविधा मिली है। पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौतों के तहत 38 विकसित देशों को इसमें जोड़ा गया है। मैं आप सभी को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत के युवाओं के कौशल, बड़े घरेलू बाजार और वैश्विक बाजारों का लाभ उठाकर बड़े स्तर पर किफायती और प्रतिस्पर्धी विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है।
2: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा वार्ता तंत्र के लिए नियुक्त विशेष प्रतिनिधि हैं। ये तंत्र वर्ष 2003 में भारत चीन के बीच 3400 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा से जुड़े विवाद का व्यापक समाधान निकालने के लिए बनाया गया था। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 17वें सम्मेलन COP17 के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्तीय तरीके पर मंत्री स्तरीय वार्ता में ये बात कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से विदेशों में नियुक्ति पर जमीनी स्तर पर मजबूत संपर्क स्थापित करने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों के साथ संपर्क को गहरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से

0: अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इस वार्षिक सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों से निपटने के लिए खुफिया अर्धसैनिक और पुलिस नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा होती है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि इन पहलों से भारतीय डाक को अधिक आधुनिक, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है।
1: डाक मित्र ऐप हमारे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, ताकि जो सेवाएं उपभोक्ताओं को हमें देना हो वो सुगमता के साथ और सुरक्षित वातावरण में हम लोग दे पाएं। पहले अनेक सेवाओं के लिए अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता था, अब सारे प्रोसेसेस को एक ही ऐप में केंद्रित कर हमारे उपभोक्ताओं के लिए सुगमता देने के लिए ये ग्रामीण डाक सेवकों के हाथों में ये ऐप दिया गया है।
0: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत को वर्ष 2040 तक रासायनिक क्षेत्र को $1 trillion की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी विकास और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने बताया कि बैठक में CBSE की शैक्षणिक परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने आज कहा कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में कल अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में तेज बारिश की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली NCR के कई इलाकों में आज मध्यम से तेज बारिश हुई। गुरुग्राम में मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों को कल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की सलाह दी गई है। साथ ही कॉरपोरेट और निजी कार्यालयों को भी अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है। भारी बारिश के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान परिचालन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच ओडिशा में लगातार बारिश के कारण कई जिलों में जलभराव, नदियों का जलस्तर बढ़ने और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
3: उड़ीसा में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोरापुट में जलभराव, घरों को नुकसान और नदियों व नालों में जलस्तर बढ़ने की खबर है, जबकि नवरंगपुर में नदी किनारे बसे गांव में बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। केंदुझर में NH 520 पर बाराबंका घाट में भूस्खलन से सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ है। हीराकुद बांध से अभी 12 गेटों के जरिए पानी छोड़ा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसमें जोड़ा में राज्य में सबसे ज्यादा 169.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। IMD ने उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2,60,00,000 रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नया आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 172 अंक नीचे आकर 77,369 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 33 अंक की सुस्ती के साथ 24,219 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 3 पैसे की गिरावट के साथ 95.74 रुपए पर बंद हुआ।
0: कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से ध्रुव जुरेल ने नाबाद 115 रन की पारी खेली। भारत श्रीलंका श्रृंखला में 1-0 से आगे है। एम्सलफेन में खेले गए हॉकी विश्व कप के मैच में भारतीय पुरुष टीम को अर्जेंटीना से 3-5 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। अब भारत ये टीम सातवें स्थान के लिए प्लेऑफ में 28 अगस्त को बेल्जियम से खेलेगी। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रसूति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6 महीने का ये पाठ्यक्रम गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को उचित स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली, मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करते हुए प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त तथा विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ओडिशा में लगातार बारिश से जल भराव और नदियों का जल स्तर बढ़ा। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and Russian President Vladimir Putin discuss ways to strengthen India-Russia ties. President Putin offers to increase fertilizer supplies. National Security Advisor Ajit Doval arrives in Peking for 25th India-China boundary talks. India calls for diversified and adequate international financing to support land restoration and build drought resilience. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh and Madhya Pradesh tomorrow. Incessant rain triggers waterlogging and rising river levels in Odisha. And in Colombo cricket test, centuries by Dhruv Jurel and Devdutt Padikkal power India to 503 against host Sri Lanka. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin today. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation, and upcoming high-level summits. The Indian Ambassador to Russia, Vinay Kumar, and Joint Secretary ERS, Mayank Singh, were also part of the delegation. During the meeting, Dr. S. Jayashankar highlighted the strong and growing India-Russia partnership, particularly in economic cooperation, trade, and energy. He conveyed Prime Minister Narendra Modi's greetings and handed over

0: राष्ट्रीय वित्तीय सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र 17वें सम्मेलन COP17 के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्तीय तरीके पर मंत्री स्तरीय वार्ता में ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Aparajita Nair. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin today. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation and upcoming high-level summits. Indian Ambassador to Russia Vinay Kumar and Joint Secretary ERS Mayank Singh were also part of the delegation. During the meeting, Dr. S. Jaishankar highlighted the strong and growing India-Russia partnership, particularly in economic cooperation, trade and energy. He conveyed Prime Minister Narendra Modi's greetings and handed over Prime Minister Modi's personal message to Mr. Putin. Dr. Jaishankar described the outcome of the Intergovernmental Commission meeting as positive.
2: Our economic cooperation, trade, energy, fertilizers, nuclear, other dimensions as well. Overall, I think our economic cooperation has grown very significantly. Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. So we have a very strong picture of cooperation to present.
1: The External Affairs Minister conveyed to Mr. Putin that Prime Minister Modi looks forward to meeting him at the SCO summit and to welcoming him to India for the BRICS summit. Speaking during a meeting, Russian President Putin offered to increase fertilizer supplies to India, saying Moscow is taking steps to support Indian farmers and the country's agricultural sector. He also highlighted the growth in trade between Russia and India this year. National Security Advisor Ajit Doval arrived in Beijing on a 2-day visit to China. He will take part in the 25th round of special representative talks between the two countries on the boundary issue with his Chinese counterpart and Foreign Minister Wang Yi scheduled tomorrow. Announcing the special representative talks at a media briefing today, Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jia said Mr. Doval and Mr. Wang will have an in-depth discussion on the boundary issue as well as other bilateral, regional and international relations. India has stressed the need for diversified, adequate, predictable and sustained international financing to support land restoration and strengthen resilience to drought. Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav said this in Ulaanbaatar, Mongolia today. He was addressing the ministerial dialogue on innovative financial mechanisms for healthy land and drought resilience during the 17th session of the Conference of the Parties to the UN Convention to Combat Desertification. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said India will amend existing regulations and introduce new rules over the next 2 months to address concerns raised

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
2: We are a young country.
3: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
2: With a large domestic market.
0: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा से जुड़ी जानकारी का एआई के जरिए विश्लेषण किया जाए, ताकि देश की सुरक्षा चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई है। गृह मंत्रालय ने बताया कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। वे कल चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे थे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने बताया कि

बैठक में सीबीएसई की शैक्षणिक परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत को वर्ष 2040 तक रसायन क्षेत्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी विकास और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में भी आज अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: और देख रहा जो तो दीपो दीपो राज कोल में
1: जे जोन सुदान बोल जीवे मोर जोन में और देख रहा जो तो दीपो दीपो राज कोल में
0: देखे नहीं हो तुमरा देखे नहीं हो हमारे कथार खिलाफ हवे ना तुमरा देखे नहीं हो आगे चाड़ा दिए मोरे खड़ा करो परे तुमरा